एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

कर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर

0: आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। दीजिए पेश है देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे ऐसा सितारा मेरा देश।

एल नितेश कुमार का गाया गीत अभी आपने सुना। इसे लिखा था सुखनिधान मिश्रा ने और संगीत तैयार किया था संजय।

सुरेश तिवारी का लिखा भक्ति गीत अभी आपने सुना, उत्तरा उन्नीकृष्णन और पी उन्नीकृष्णन की आवाज़ों में। संगीत तैयार किया था अलाप देसाई ने। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोग नाना प्रकार के भौतिक संसाधनों का संचय करते हैं। यद्यपि इन वस्तुओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संचय भी उतना ही आवश्यक होता है, और वो है ज्ञान का संचय। धन का संचय आपको अभिमानी बनाता है, वस्तुओं का संचय आपको लालची, किंतु ज्ञान का संचय आपको इन दुर्गुणों से सदा ही दूर रखता है। श्रोताओं, भौतिक संसाधन तो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, किंतु अर्जित ज्ञान को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता।

0: कोयल त्रिपाठी की आवाज़ और संगीत निर्देशन में अभी आपने सोनिया मिगलानी का लिखा कृष्ण भजन सुना और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम में सुनिए मिट्टी परीक्षण से लाभ विषय पर जानकारी। वाचक हैं अभिनव गौरहा।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आज खेती के बात के विषय है मृदा परीक्षण के महत्व और प्रक्रिया। हम जानथन कि हमर देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश जनसंख्या आज खेती किसानी कृषि में आधारित है। बढ़त हुए जनसंख्या ला दृष्टिगत रखत हुए ये आवश्यक है कि कृषि उत्पादन बढ़ाए के संग संग माटी के उर्वरता ला घलाव बढ़ाया जाए। आजकल के खेती गहन कृषि विधि में आधारित है। एकर अंतर्गत साल भर में ओ माटी में ओ भूया में दू या दू से अधिक फसल लेत रहे ले पोषक तत्व के बड़ तेजी से भूया में कमी देखे जा सकत है। जेखर से माटी परीक्षण के द्वारा माटी में उपस्थित पोषक तत्व के मात्रा के पता करना और ओखरे अनुसार फसल में पोषक तत्व के समुचित प्रबंधन करना बड़ जरूरी है। संग में माटी के विभिन्न विकार के पता करना और ओखर अनुसार माटी के सुधार करना संभव होते माटी परीक्षण के द्वारा। माटी परीक्षण के मुख्य उद्देश्य की बात करी मृदा के उर्वरता शक्ति के जांच करके फसल और किस्म विशेष पर पोषक तत्व के संतुलित मात्रा के सिफारिश करना और मार्गदर्शन करना कि उर्वरक और खाद के प्रयोग कब और कैसे करना है। माटी के विभिन्न समस्या जैसे अम्लीयता, क्षारीयता और प्रदूषण आदि के पता लगाना और ओखर अनुसार ओखर सुधार में सुझाव देना। ऐसन फसल और ओखर प्रजाति के सिफारिश करना जौन अम्लीयता, लवणीयता और क्षारीयता ला सहन करे के क्षमता रखत हुए। फल के बाग लगाए बर भूया के उर्वरता शक्ति के पता लगाना, माटी के उपजाऊ शक्ति के मानचित्र बनाना और ओखरे आधार में क्षेत्र विशेष में माटी के उपजाऊ शक्ति के समय के साथ साथ होए वाले विभिन्न परिवर्तन के अध्ययन करना, आवश्यकता अनुसार उर्वरक प्रयोग करवाना। तो आवा अब जानबो नमूना माटी के जब हम परीक्षण करवाबो तो नमूना माटी के कौन ढंग ले खेत से लेना है। सबले पहली खेत के सर्वेक्षण करके ओखर ढाल, ओखर आकार और उचित भाग महमल्ला बांट लेना है। एकर बाद टेढ़ा मेढ़ा रेंगत हुए 12 से 15 निशान लगा लेना है। ओखर

0: बाद एक पैत में एक एकड़ से ज्यादा हमन ला माटी के नमूना नहीं लेना है। अगर पूरा खेत एक समान है तो ढाई एकड़ मतलब प्रति हेक्टेयर एक नमूना बना सकत हन। नमूना लिए बर औजार हम खुरपी के रापा के लकड़ी के प्रयोग ले सकत हन। नमूना लिए बर गहराई के बात करी अन्न है दलहन है तिलहन है गन्ना है कपास है चारा है सब्जी है मौसमी फूल बर ऊपरी सतह से 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई से 10 से 15 जगह से नमूना लेना है और बागवानी या अन्य वृक्ष पर 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90 सेंटीमीटर तक के अलग अलग वृक्ष के अनुसार नमूना लेना है। सतह से नमूना लिए बर सभी जगह मन में खुरपी के सहायता से वी मतलब ऊपर से नीचे चौकी आकार के गड्ढा बनाना है और एक किनारे से 2.0 सेंटीमीटर मोटा परत काट के मिट्टी ला एकत्रित करना है। ये तो हो इस नमूना लिए के बाद। नमूना तैयार करे के बात करी एक खेत से लिए गए सबो नमूना ला साफ पॉलीथीन सीट या बिल्कुल साफ जगह में रख के बढ़िया ढंग से मिला लेना है। पूरा मात्रा ला गोल आकार में एक समान मोटाई में फैला लेना है और हाथ से 4 भाग में बांट लेना है। ओखर बाद आघू वाले 2 हिस्सा ला हटा लेना है। बचे हुए हिस्सा ला फिर एक साथ मिला के 4 भाग में बांटना है। ये प्रक्रिया जब तक दोहराना है जब तक कि 0.5 किलो नमूना माटी के नहीं बच जावे। माटी अगर हल्का गीला है तो ला छांव में सुखा के साफ थैली में रख लेना है। अब बचे हुए नमूना ला पॉलीथीन सीट में भर के ओमा किसान के नाम पता नमूना संख्या लिख के पूरा पता लिख के ओला नमूना सेंटर में माटी परीक्षण सेंटर में जमा कर देना है। कुछ सावधानी के बात करें तो नमूना खेत के सच्चा प्रतिनिधि होते ओखर प्रयोग में लाए जाए वाले औजार थैली आदि बिल्कुल साफ होए। माटी के नमूना खाद के ढेर पेड़ मेड़ और सिंचाई के नाली रास्ता से लगभग 2 मीटर की दूरी से ही नमूना लेना है। माटी के नमूना ला खाद उर्वरक और दवाई के संपर्क में नहीं आए देना है। जौन खेत में कंपोस्ट खाद चूना जिप्सम या अन्य कोई भूमि सुधारक तत्काल डाले गए वो खेत से नमूना नहीं लेना है। ये सावधानी के चेत करना है। तो किसान भाई हो ये हो इस माटी परीक्षण के गोट। राम राम जय जोहार।
1: खेती की बात कार्यक्रम में अभी आप मिट्टी परीक्षण से लाभ विषय पर जानकारी सुन रहे थे। वाचक थे अभिनव गौरहा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं ए हरिहरन। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं।

श्रोताओं, सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव था, पर था वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज और उसके कारण उनकी मृत्यु का बदला लिया था। इन्होंने भगत सिंह का मार्गदर्शन किया था। इन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को मृत्युदंड दिया गया था। इनके बलिदान को आज भी संपूर्ण भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सुखदेव भगत सिंह की तरह बचपन से ही आजादी का सपना पाले हुए थे। दोनों एक ही वर्ष पंजाब में पैदा हुए और एक ही साथ शहीद हो गए थे। 1907 में आज ही के दिन जन्म हुआ था महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर जी का। और इसी के साथ कार्यक्रम आज सुबह बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए सीमा को।

हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जब तनाव बढ़ रहा था तो केंद्र में स्थिर और दृढ़ सरकार का होना बहुत जरूरी था। कैबिनेट मिशन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाने में असफल रहा। जुलाई 1946 में लॉर्ड बेवेल ने पुनः इस दिशा में प्रयत्न आरंभ किया और जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू ने जिन्ना को अंतरिम सरकार में सम्मिलित करना चाहा, लेकिन उन्होंने न केवल सहयोग देने से इनकार कर दिया किंतु बड़ी ही कटु आलोचना की और ये भी घोषणा की कि मुस्लिम लीग 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाएगी। उस दिन कलकत्ता में ऐसा भीषण दंगा, खून खराबा और मारकाट हुई जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। कलकत्ता के भयंकर नरमेघ की प्रतिक्रिया हुई और पूर्व बंगाल, बिहार और पंजाब में सांप्रदायिक ज्वाला की लपटें उठने लगी। जब गांधी जी को बंगाल के उपद्रवों की सूचना मिली, उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया और दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि पूर्वी बंगाल के गांवों में भय, घृणा और हिंसा का बोलबाला था। गांव गांव में जाकर उन्होंने लोगों की दशा अपनी आंखों से देखी। गांधी जी ने इस बात की कोशिश की कि लोग शांति स्थापना को राजनीति से अलग कर शुद्ध मानवता का प्रश्न समझें। उन्होंने आग्रह किया कि भारत का भावी नक्शा चाहे जो भी हो, सभी राजनीतिक दलों में इस बात पर पूर्ण सहमति होनी चाहिए कि सभ्य जीवन के मानदंडों की अवहेलना नहीं होगी। गांधी जी की उपस्थिति से पूर्वी बंगाल के संतप्त गांव में कुछ शांति आई, तनाव ढीले पड़ गए, क्रोध शांत हुआ और मन स्थिति में सुधार हुआ। मार्च 1947 में वो बिहार गए जहां हिंदू किसानों ने पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यकों द्वारा किए गए अत्याचारों का भयंकर बदला लिया था। बिहार को भी गांधी जी ने वही संदेश दिया जो पूर्वी बंगाल को दिया था। बहुसंख्यकों को अपने कृत्यों के लिए पश्चाताप कर अपनी भूल सुधार कर क्षति की पूर्ति करनी चाहिए और अल्पसंख्यकों को क्षमादान द्वारा नया जीवन शुरू करना चाहिए। दुर्घटनाओं के लिए वो कोई भी बहाना सुनने को तैयार न थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों को फटकारा जो बिहार में हुए दंगे का इस आधार पर समर्थन करते थे कि वे पूर्वी बंगाल की घटनाओं की प्रतिक्रिया थे। दूसरे चाहे जो भी करें, सभ्य व्यवहार हर व्यक्ति और समुदाय का अपना कर्तव्य है। देशव्यापी अराजकता से बुरी तरह घबरा कर लॉर्ड बेवेल ने लीग को भी अंतरिम सरकार में सम्मिलित कर लिया, लेकिन इस संयुक्त मंत्रिमंडल से राजनीतिक वाद विवाद समाप्त होने के बजाय तेजी से बढ़ा। 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की बैठक होने वाली थी, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। वैधानिक संकट इतना गहरा हो गया था कि नवंबर 1946 के अंतिम सप्ताह में ब्रिटिश सरकार ने दोनों दलों में समझौता कराने के लिए वायसराय नेहरू, जिन्ना, लियाकत अली खां और सरदार बलदेव सिंह को बातचीत के लिए लंदन बुलाया। वहां की बातचीत भी निष्फल रही, लेकिन सरकार ने विवादास्पद बातों पर अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए एक वक्तव्य निकाला। इससे लीग की बहुत सी आपत्तियों का निराकरण हो गया, लेकिन फिर भी वो संविधान सभा में भाग लेने को राजी न हुई। गांधी चर्चा में हम कुछ और बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं गांधी जी का ये

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह आकाशवाणी का, यही बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:21 होने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज का विषय है सांप्रदायिकता की लपटें।

गांधी जी के इस भजन के बाद कुछ और बातें गांधी चर्चा में। 1947 के आरंभ में देश के राजनीतिक क्षितिज पर घनघोर काली घटा छाई हुई थी। स्थिति को अराजकता की ओर बढ़ते देखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस नतीजे पर पहुंचे कि एक नई नीति की जरूरत है और एक नया वायसराय ही उसे कार्य रूप दे सकेगा। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है और यदि उस समय तक भारतीय राजनीतिक दल अखिल भारतीय संविधान के विषय में एकमत न हो सके तो ब्रिटिश सरकार में किसी तरह की केंद्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रों की तत्कालिक प्रांतीय सरकारों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय होंगे। 20 फरवरी के वक्तव्य में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के निश्चय और उनकी तारीख दोनों की घोषणा कर दी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च में भारत पहुंचे। उनका पहला काम था गांधी जी को बातचीत के लिए आमंत्रित करना। बिहार में अपना शांति स्थापन कार्यक्रम रद्द करके गांधी जी दिल्ली पहुंचे। अगले कुछ सप्ताहों में ये स्पष्ट हो गया कि भारत के विभाजन द्वारा ही राजनीतिक गतिरोध दूर किया जाएगा। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अपनी मांग पर अड़ी रही। विभाजन के प्रति कांग्रेस के दृष्टिकोण में भी कुछ परिवर्तन हुआ। अभी तक कांग्रेस इस बात पर अड़ी थी कि यदि बंटवारा होना ही है तो वो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हो, पहले शादी पहले तलाक उसके बाद। लेकिन अंतरिम सरकार में कुछ महीने मुस्लिम लीग के साथ काम करके और उसके विचारों को बदलने की जी तोड़ कोशिश को बेकार जाते देख चुकने के बाद नेहरू, पटेल और दूसरे कांग्रेसी नेता मुस्लिम लीग के साथ किसी तरह के गहरे मेल मिलाप या एकता की आशा छोड़ चुके थे। 1947 के फरवरी मार्च में हालत ये हो गई थी कि उनके सामने एक ही विकल्प था, अराजकता या विभाजन। अराजकता की जो विभीषिका पूरे देश का संहार करने जा रही थी, उससे 3/4 देश को बचाने के लिए उन्होंने कलेजे पर पत्थर रखकर विभाजन स्वीकार कर लिया। ये तो थी आज की गांधी चर्चा। आज की गांधी चर्चा हम यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम गांधी चर्चा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज का विषय था सांप्रदायिकता की लपटें। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:31 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

0: नीला आकाश फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और धुन तैयार की थी मदन मोहन ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

नील कमल फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और धुन तैयार की थी रवि ने। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से इस समय आप आकाश

वाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, फोन करें, गीत सुने। कार्यक्रम का प्रसारण महीने के तीसरे सोमवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 18 मई 2026 सोमवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 15 मई 2026 शुक्रवार यानी आज प्रातः 10:30 से 11 बजे के बीच की जाएगी। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752-266592 और 310026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

मधुमती फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी सलील चौधरी ने। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

इन दीवार का लिखा गीत आपने सुना कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

तीसरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। हम अपने सुनने वालों को बता दें, सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए गूंजे स्वर गांव के। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00। प्रादेशिक समाचार सुबह 9:55 पर और 11:55 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8:00 ही वाले हैं समाचार प्रभात। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता

0: है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई

0: उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपये और डीजल 93.14 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपये और डीजल 95.13 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपये और डीजल का मूल्य 95.35 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी

0: के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में

0: भी एसआईआर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए, सरकारी दफ्तरों का समय बदला, दो दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, Energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE so Sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shandi Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
2: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
4: UAE has emerged as a very close third largest trade partner.

0: इनसे मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति की बुनियादी जरूरत शिक्षा होती है, और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश के अनेक राज्य आज शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जहां तक साक्षरता और शिक्षा की बात है, हमारे प्रदेश ने भी शिक्षा के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में देश के अन्य राज्यों की तरह अपना एक स्थान बनाया है। अगर अतीत की बात करें तो हमारे प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा साक्षरता और शिक्षा की दृष्टि से काफी पीछे चल रहा था, लेकिन आज विभिन्न प्रयासों के साथ इस रेस में हम भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारे प्रदेश में वर्तमान में साक्षरता और शिक्षा की क्या स्थिति है, और इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत कुमार पांडे को इस कार्यक्रम में। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: प्रशांत जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही है।
1: मेरा जन्म रायपुर में हुआ है, और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में मेरे पिताजी चूंकि शासकीय सेवा में रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर जहाँ जहाँ होता था वहाँ वहाँ हम रहे। जैसे पहले प्रारंभिक शिक्षा हमारी बस्तर में हुई, रायपुर जिले में हुई, फिर बालोद जो अब अलग जिला बन गया, पहले विभाजित दुर्ग जिला हुआ करता था, वहां पर हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई।
0: उसके बाद फिर उच्च शिक्षा आपकी कहाँ की रही?
1: उच्च शिक्षा भी हमारी ज्यादातर शुरुआत जो है वो रायपुर की रही, और उसके बाद फिर बालोद में ही हमारी उच्च शिक्षा हुई।
0: आपकी उच्च शिक्षा जब पूर्ण हुई तब आपने सोचा होगा कि किस क्षेत्र में जाया जाए?
1: जब मैं शासकीय महाविद्यालय बालोद में अध्ययनरत था, उस समय रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रोग्राम चलता था, प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम। उसमें 10 केंद्र जो असाक्षरों को साक्षर करने के लिए पढ़ाए किए जाते थे, जन शिक्षण निलियम ये बनाया गया था। उस समय वहाँ पर जो भी प्रभारी प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे मेरी रुचि को देखते हुए, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना NCC इत्यादि की रुचि को देखते हुए मुझे कहा कि आपके लिए एक बहुत अच्छा काम है, तो आप ये करेंगे? तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि असाक्षरों को

0: साक्षर करना है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो उन 10 केंद्रों के सुपरविजन का काम मुझे सबसे पहले सौंपा गया था। ये 1986 की बात है लगभग। तो पहली शुरुआत मैंने वहाँ से जब की तो धीरे धीरे मेरे मन में ये महसूस हुआ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, तो ऐसे लोगों को ही साक्षर किए जाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
1: प्रशांत जी, जब इस कार्य की शुरुआत आपने अपने जीवन में की तो ये कितने बरस पहले की बात होगी?
0: ये लगभग 35-35 वर्ष पूर्व की बात है, क्योंकि 86 से 1990 के दरमियान मैं कॉलेज में ही था और उस समय मैंने ये कार्य वहाँ पर किया। और उसी समय जब मैं कॉलेज में की पूरा करने के बाद जब अपनी पढ़ाई मेरी समाप्त हो रही थी, उसी समय अविभाजित मध्य प्रदेश में साक्षरता आंदोलन चला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चलकर ये अभियान हमारे अविभाजित दुर्ग जिले तक पहुंचा और उस आंदोलन से मैं जुड़ गया। और पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, धीरे धीरे से मैंने राज्य स्तर और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा।
1: प्रशांत जी, जिस वक्त साक्षरता अभियान चला था उस वक्त तो हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, लेकिन फिर भी अगर हम अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति उस समय कैसी थी, फिर बाद में इसमें किस तरह का परिवर्तन आपने देखा?
0: पहले तो लगभग 1/4 लोग असाक्षर उस समय थे जब राज्य बना था 25 वर्ष पहले। अब तो 26वें वर्ष में हम प्रवेश कर लिए हैं और आज स्थिति आ गई कि हम अब 1/3 और उससे भी कम हमारे अब असाक्षर रह गए हैं। लगभग ये हम यदि थोड़ा सा भी यदि प्रयास करेंगे तो हम लोग 100% साक्षरता की ओर एक निश्चित कार्य योजना जो हमारी बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम 47 के पहले तक हम 100% लिटरेसी को प्राप्त कर ले, तो उसके पहले भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं।
1: अगर अभी हम पूरे देश में राज्यों की एक लिस्ट बनाते हैं तो साक्षरता की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को आप कहाँ पाते हैं?
0: साक्षरता की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ अभी का जो पायदान है वो काफ़ी नीचे, 10 से नीचे अभी आ गया है वो।
1: आपने 2003 के बाद जब यहाँ पर साक्षरता अभियान चलाया तो उसके बाद की और आज की स्थिति में आपको जो फर्क दिखाई दे रहा है तो उसमें अब कितना बाकी है, क्यों बाकी है, क्या कारण है कि क्या लगातार ये चल नहीं रहा है या इसे और अधिक तेजी से चलाने की जरूरत है अभियान को?
0: ऐसी बात नहीं कि नहीं चल रहा है, इसमें कुछ फैक्टर वो काम करते हैं। देखिए, असाक्षर कौन होता है? हमारी जो प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे स्कूल आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो शाला त्यागी हो जाते हैं, अपने घर में खेत में काम करने की वजह से, या परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं होता, वो जानवर चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, गाय भैंस चराने के लिए या अन्य कामों में वो यदि व्यस्त हो जाता है, इसलिए वो स्कूल से बाहर हो जाता है। बहुत हम प्रयास करते हैं उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ देता है, और जो पढ़ा भी होता है तो जाके आगे जाके वो भूल जाता है, और वही व्यक्ति हमारे जो है असाक्षरों के टारगेट में आ जाता है, और वो भले ही 5वीं पढ़ा हो, 8वीं पढ़ा हो, लेकिन फिर से वो असाक्षर हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमको सबसे पहले ये करना होगा कि हम एक तरह से ऐसा है कि ये जो कमरा है इसमें यदि हम नल चालू कर दें और पानी आ रहा है लगातार, और हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम इस कमरे से पानी को खाली करने के लिए हम एक बर्तन से पानी निकालते जा रहे हैं और बाहर हम करते जा रहे हैं। हमको यदि इसको 100% बंद करना होगा, मेरी ये मान्यता है कि साक्षरता अभियान तो चलना ही नहीं चाहिए, इसका स्वरूप बदलना चाहिए। यानी हम पहले नल को बंद कर दें, फिर हम पूरे असाक्षरों को साक्षर कर दें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोग फिर से असाक्षर न बने। जो हमारे स्कूल में जो लोग एडमिशन ले लिए हैं, सबसे पहले तो 100% हम एडमिट लोगों को करें, और हम यदि उनको एडमिट कर लिए हैं तो ऐसा कोई कारण ना हो, स्कूल का वातावरण हम ऐसा बनाएं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती कि इस तरह से हम लोगों को पढ़ाएं रोचक तरीके से, कि वो लोग स्कूल से बाहर ना जाएं, और किसी भी कारण से चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, हम वो परिस्थितियां निर्मित न होने दें कि वो स्कूल से बाहर जाएं, उनको इस तरह से सपोर्ट किया जाए, तब हम 100% ये टारगेट अचीव कर सकते हैं और 100% साक्षर कर सकते हैं।
1: प्रशांत जी, इसमें जन जागरूकता भी एक बहुत बड़ा पक्ष है। आमतौर पर

0: ये होता है कि शासन की ओर से प्रयास किए जाते हैं कि गांव के सारे ही सारे बच्चे स्कूल में आए, लेकिन कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसे निर्मित होती हैं कि उसकी वजह से बहुत से परिवार वाले जो हैं अपने बच्चों को पूरी तरह से स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं होते हैं, या फिर कई बार ड्रॉप करना पड़ता है उनको। तो लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, जन जागरूकता के आजकल बहुत सारे उपाय हैं। मीडिया तो बहुत बड़ा प्रभाव डालता ही है, और इसके साथ साथ हमको ऐसे लोगों को छांटना पड़ेगा, ऐसे लोगों का चयन करना पड़ेगा जिनके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, यानी जो सेवाभावी व्यक्ति हैं, जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आजकल लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में। गलत नहीं है कि अपने फायदे के बारे में सोचें, लेकिन यदि आप देश के बारे में सोचेंगे, दूसरों के फायदे में के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला आपके आपके बारे में, आपके फायदे के बारे में सोचेगा। यह दृष्टिकोण यदि हमारे मन में हो जाए तो हमको टॉप टू बॉटम, मतलब उच्च शिखर से लेकर हमारे जो वार्ड तक के, घर तक के है, वहां पर हमको ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना पड़ेगा, नंबर एक, और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उनके साथ साथ जितने नेतृत्वकारी लोग हैं उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, उनको इस अभियान की जिम्मेदारी देनी होगी कि आपको अपने क्षेत्र को पूर्ण रूप से शिक्षित करना है, साक्षर करना है, 100% बच्चे स्कूल जाएं, 100% बच्चे बाहर बिल्कुल ना जा पाएं, यदि कोई बाहर जाता है उनके लिए उचित शिक्षकों की व्यवस्था हो, शिक्षक न केवल शिक्षकों की व्यवस्था है बल्कि वो पूरी दक्षता से, पूरी क्षमता से उनको परिणाममूलक तरीके से पढ़ाएं, अध्ययन अध्यापन करें जिनका उनका मन लगे, और रिजल्ट भी अच्छा है, परिणाम भी अच्छा है। और कोई भी यदि स्थितियां ऐसी निर्मित होती, कोई परेशानी आती है, तो वो परेशानियों को दूर करें, और सामाजिक लोगों को भी आप विश्वास में लो, जो समाज में बैठे हुए हैं, जो केवल अभी अन्य कार्यों में, यदि खाली दिमाग शैतान का होता है, उनको अच्छे कामों में आदि व्यस्त कर देंगे ना, तो आपको दुर्घटना भी नहीं होंगी और उनका भी मन लगेगा, जब वातावरण बनाए जाने की जरूरत है। और इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, यदि अच्छी इच्छा शक्ति आपकी होगी तो हम बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है, अभी जो मुझे नई जिम्मेदारी मिली है, वो इसीलिए मिली है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो बाल्यकाल से लेकर उच्चतर शिक्षा के लिए जो नीति बनाई गई है, उन नीति का बेहतर तरीके से कैसे क्रियान्वयन हो, ये बहुत जरूरी।
0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े श्री प्रशांत कुमार पांडे, और इनसे हम विस्तार से आगे और बातचीत करेंगे। तो उससे पहले प्रशांत जी, इस बातचीत को थोड़ा सा हम मनोरंजन की ओर मोड़ना चाहेंगे और आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
1: वाह वाह वाह, फिल्म और ये सब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन गाने के बोल जरूर
0: बिल्कुल बताएं।
1: जब कोई बात बिगड़ जाए,
0: बिल्कुल,
1: जब कोई मुश्किल, हाँ मुश्किल पड़ जाए,
0: हाँ, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म जुर्म का ये गीत।

0: क्या बात है प्रशांत जी, बहुत अच्छा गीत आपने सुनवाया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, और मुश्किल की घड़ी तब होती है जब इंसान के जीवन में अशिक्षा का अंधकार होता है, और आप उसी अंधकार को दूर करने के लिए चल पड़े हैं। प्रशांत जी, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो एक जिम्मेदारी सौंपी गई है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में बताएं।
1: देखिए, मैंने पहले महाविद्यालय में 1990 तक और उसके बाद 1990 से 2003 तक जिले में, 2003 से 2025 तक राज्य में काम किया, और इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में जब मैं गया तो मेरा जुड़ाव राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हुआ तो ये महसूस किया गया कि अब पूरे प्रदेश में कुछ नया किया जाए। और संभवतः जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं उन्होंने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति की उनको तलाश थी कि जो व्यक्ति लंबे समय से जुड़ा हुआ हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और जो परिणाम मूलक कार्य करता हो, यानी परिणाम दे सकता हो। उनको जब ये पता चला कि 25 जो साल हुए हैं और 25 साल में हमको 25 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, उसमें से हम जिस विभाग में कार्य किया है उसमें दो और बाकी जिलों को मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा ये दायित्व होगा। उनके पीछे उद्देश्य ये है, इस जो स्वायत्त शासी जो संस्थान है उसका उद्देश्य ये है कि हम इस कार्य के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो लागू है उसका कैसे बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन कर सकें, इसमें हम माननीय जनप्रतिनिधियों को कैसे कन्विंस कर सकें, हम इसमें सामाजिक क्षेत्र के लोगों को कैसे जोड़ सकें, हम इसमें जो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे मीडिया का कैसे हम समावेश इसमें कर सकें। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा गुणवत्ता पर इसमें फोकस किया गया है। शिक्षा गुणवत्ता भी यदि हम बोलेंगे तो टॉप टू बॉटम, और उसमें ऐसी शिक्षा नहीं जो केवल हमें नौकरी तक पहुंचाती हो, बल्कि ऐसी शिक्षा जो एक बेहतर इंसान बनाती हो। इसमें मूल रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष रूप से हमें जोड़ा जाना होगा, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के बिना कोई भी यदि शिक्षा दी जाए वह अधूरी है। उसको जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक के यह हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें

0: इसमें डाली होंगी। नैतिकता की बातें तो छूट ही गई हैं आजकल, और जो गंभीर उसके दुष्परिणाम निकल रहे हैं उसको भी इसमें शामिल करना होगा। तो शिक्षा गुणवत्ता मेन है। शिक्षा गुणवत्ता तभी हो सकती है जब बालक, पालक, शिक्षक ये तीनों मिलकर शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दें। हम क्या करते हैं, हम बच्चों के स्कूल में डाल देते हैं और उनको शिक्षक के भरोसे छोड़ सकते हैं, शिक्षक पालक के भरोसे रहते हैं, वो तो पढ़ के आएगी, वो किसी अन्य कार्य में बिजी रहते थे। ये देखना होगा कि वो शिक्षकों को शिक्षकीय कार्य में ही रखा जाए, ये प्रयास होना चाहिए। और घर में भी शिक्षा के लिए वातावरण हो, माता पिता हो, बाप भाई हो, और जो उसके सारे जो रिश्तेदार हैं वो घर पे भी उसको एक वातावरण हो, ये हम प्रयास करेंगे। और दूसरा उसकी पेरेंटिंग अच्छी हो, गुड पेरेंटिंग भी एक सब्जेक्ट होगा इसमें कि कैसे पेरेंटिंग हो बचपन से लेकर उसको, और उसको उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए उसको पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ा दबाव जो बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं कि अभी रिजल्ट का दौर चल रहा है और रिजल्ट में आपने देखा होगा हम अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि इतने परसेंट लाना, इतने परसेंट लाना। आप बहुत सारे लोगों का उदाहरण देखिए देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सफल हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अंक पाए हों, गढ़ना जरूरी है। और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देंगे, जब तक प्रशिक्षण में ध्यान नहीं देंगे तब तक कक्षा का वातावरण नहीं बदल सकता।
1: प्रशांत जी, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमारे पूरे प्रदेश के लिए, अगर हम आपकी इस जिम्मेदारी के साथ में हमारे प्रदेश में शासन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा की अभी जो व्यवस्था है उसको अगर देखा जाए तो उसमें उसको सुधार करने के लिए आपकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर, आपके ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर हम अपनी इकाई का गठन करेंगे। उसमें हमको ये स्वायत्तता दी गई है सेंट्रल के द्वारा, केंद्र के द्वारा, कि हम इसमें शासकीय और अशासकीय दोनों लोगों को इसमें शामिल कर सकें। और इनको जब हम जोड़ लेंगे, एक हमारी कमेटी गठित हो जाएगी, तो फिर हम माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए, पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए जिसमें नगरीय निकाय भी, नगरीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं उनको, और जो हमारे सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, और फिर टॉप टू बॉटम हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे, फिर हम गांव-गांव में स्वयंसेवी व्यक्ति तैयार करेंगे। वो स्वयंसेवी व्यक्ति जो है वो न केवल बच्चों की शिक्षा से लेकर बड़ों की शिक्षा तक ध्यान देगा। यही न केवल ये प्रक्रिया हमारी स्कूली शिक्षा में होगी बल्कि यह प्रक्रिया हमारी उच्च शिक्षा के लिए भी रहेगी। तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। पहले तो हमने केवल शिक्षा नीति के चैप्टर नंबर 21 जो प्रौढ़ शिक्षा थे उस पर काम किया था, और ये जो दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है, इसमें हमको बच्चों की शिक्षा से, बाल्यावस्था की शिक्षा से, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी और बालवाटिका आपने सुना होगा, वहाँ से उनकी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक की शिक्षा पर हमको काम करना होगा। और केंद्र और राज्य के सारे लोग हम रिसर्च भी करेंगे, सर्वे भी करेंगे और रिपोर्ट सेंट्रल को और स्टेट को देंगे और उसके साथ सबके साथ समन्वय के साथ काम करेंगे।
1: हमने सुना है कि आपने विदेश की भी यात्राएं की हैं। विदेश की यात्राओं में क्या शिक्षा ही आपकी यात्रा का उद्देश्य रहा है, या विदेश की शिक्षा और भारत की शिक्षा को आपने नज़दीक से देखा है, तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा है?
0: निश्चित रूप से मुझे कई बार विदेश यात्रा अल्प समय के लिए जाने का मौका मिला, लेकिन मैं ज़्यादा समय के लिए जो मैं गया हूँ वो लंबे समय के लिए बोलना चाहिए, वो मैं गया हूँ थाईलैंड और जापान। पहले एक स्टडी टूर में मैं थाईलैंड गया और उसके बाद मैं जापान गया। जापान में मैंने महसूस किया यूनेस्को और जाइका, मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन सोसाइटी, इसके सहयोग से हमारा वहाँ जाना हुआ था। एशियाई कंट्रीज़ के जो लोग हैं, 11 लोग 11 देश से चयन किए गए थे। हमारे यहाँ भी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हुई थी कि हर राज्यों से पहले तो नाम का चयन हुआ था, फिर अंत में पूरे देश से एक व्यक्ति का चयन हुआ और संयोग से उस एक व्यक्ति में मुझे अवसर मिला। मैं वहाँ पर जब गया तो मैंने देखा कि शिक्षा ही वहाँ के विकास का मूल मंत्र है, लेकिन शिक्षा को वो लोग बहुत ज़्यादा बेसिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ की शिक्षा में मुझे महसूस किया, सबसे ज़्यादा मैंने जो उस देश में महसूस किया जापान में खासतौर पर, मुझे अनुशासन बहुत देखने को मिला। सबसे ज़्यादा वो अनुशासन पर ध्यान देते हैं, पंक्चुअलिटी जिसको बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया वहाँ पर मैंने को देखने को मिला। जैसे हम तो कोई डेलीगेशन कहीं पर जाता है तो हम लोग उनके लिए

0: इतनी व्यवस्था करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हरफो आगे आने, उन लोगों ने भी हमारे शहर से दूर जाने के लिए स्पेशली जैसे यहाँ पर स्पेशल प्लेन होते हैं तो हम लोग जितने लोग थे उतने सीटर, 25 सीटर हमको एक प्लेन दी गई थी इधर वो जाने के लिए, वो हमारे लिए खड़ी रहती थी हमेशा जैसे जो सुविधाएँ मिलती। लेकिन ट्रेन में भी, बुलेट ट्रेन में भी हम लोग को उन्होंने कराया। मैं, मेरे को बताने का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ स्पेशल प्लेन या बुलेट ट्रेन और इसमें बैठा, बल्कि वो सब में सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बुलेट ट्रेन में बैठे हैं और हम आनंद लेने जा रहे हैं, वहाँ पर वो, वहाँ पर भी क्लास हमारी चलती थी, क्या सीख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं। और खाली वही नहीं, साइकिल भी चलवाते हैं उनको और पैदल भी चलवाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने उतरे ट्रेन से और बस तक के हमको कोई ऑटो रिक्शा या वाइक, वहाँ से पैदल चलना है आपको, यानी वो पैदल भी, जितना आपने खाना खाया है वो आपको पचाना भी, और हेल्थ के लिए जितने कदम चलना जरूरी है उतना कदम चलना है। तो अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। और एक क्लास में मैंने एक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पर देखा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहे हैं और सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वहाँ जैसे हम लोग एक टेबल पर बैठे हैं, वहाँ गोल में अलग अलग टेबल पर, जैसे आज कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल इंटरनेशनल, हम लोग भी वर्कशॉप करते हैं टेबल गोल मेज कॉन्फ्रेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग टेबल पर ग्रुप बैठते हैं, पीयर लर्निंग जिसको बोलते हैं, आपने कई बार इंटरव्यू लिया है तो उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा। तो उस तरह के ग्रुप एक्टिविटी वहाँ पर होती है, एक्टिविटी बेस्ड, आपको क्लासरूम लगेगा ही नहीं जब क्लास आप जाएंगे तो। और एक क्लास में एक टीचर नहीं होता, दो टीचर होता है, एक पढ़ाता है और एक ऑब्जर्व करता है। और जैसे ये स्टूडियो बना हुआ है, स्टूडियो में बाजू में रिकॉर्डिंग के लिए एक रूम बना हुआ है, वैसा ही वहाँ पर एक दूसरा कमरा होता है, वहाँ से वहाँ पर उन ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से थोड़े पीछे जा रहे हैं, कभी फिल्म पहले आई थी आपको याद होगा तारे जमीन, तो तारे जमीन पर में जिस तरह से टीचर ऑब्जर्व करता है उस तरह से वो टीचर ऑब्जर्व करते हैं, और वो टीचर ऑब्जर्व करने के बाद उनको अलग कमरे में रखा जाता है और उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उपकरण होते हैं, लर्निंग उनके मटेरियल होते हैं, वो वहाँ उनके लिए उस तरीके से रखे जाते हैं, और जब वो उस लेवल को अचीव कर लेते हैं तब उनको इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो जो देश जो कंट्री एक एक बच्चे के लिए ध्यान देता है, और जैसे हम स्टूडियो में अपने जूते चप्पल बाहर रख के आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो हम जूते चप्पल बाहर रखते हैं, वैसा ही सिस्टम वहाँ स्कूलों में है कि वहाँ आप जाइए और जूते चप्पल सब बाहर रखने का सिस्टम है, शिक्षा एक मंदिर की तरह है। ये बड़ी बात हमने देखी वहाँ पर, और टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाने का तरीका और दिखाने का तरीका। अभी तक क्या होता है, आपको हम यदि पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस है, ये अस्पताल है, ये बैंक है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये दूरदर्शन है, या हम इस तरह से बताएंगे तो वहाँ का सिस्टम क्या है, वो उनको वहाँ ले जाकर दिखाते हैं, वहाँ है ये अंदर ले जाकर दिखाएंगे बच्चों को। यहाँ तो कभी कभी हम किसी किसी जगह दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा विधानसभा लोकसभा बच्चों को दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ तो अनिवार्य ये सब चीज़ें, कि पोस्ट ऑफिस है, ये बैंक है, ये एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, है ना, ये आकाशवाणी है, ये दूरदर्शन है, ये सारी चीज़ें ले जाके कंपलसरी दिखाने का, ये बहुत अच्छा हमको सीखने को मिला, और उसको हमने यहाँ पर आने के बाद अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लागू किया, और उसका ही परिणाम है कि हमको जो अवार्ड मिला है, यदि छत्तीसगढ़ की द्वारा या वहाँ से हमको चयन नहीं होता तो ये उसके परिणाम भी हमने दिखाए, परिणाम भी हमने दिया कि कई लोग तो विदेश घूम के आ जाते हैं और स्टडी तक रह जाती है।
1: तो प्रशांत जी, आपने अवार्ड का जिक्र किया तो हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि इसी क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड हैं जो आपके हिस्से में आए हैं।
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जब शुरू में हम यहाँ पर आए थे तो छत्तीसगढ़ के जिलों की स्थिति अच्छी नहीं थी, सभी जिले अलग अलग तरीके से परेशानियों में व्यस्त थे, उनके अकाउंट सब बंद थे और उनको ऐड मतलब वहाँ से अनुदान नहीं मिल रहा था, उसके बहुत सारे कारण थे। उन सब कारणों को हमने ठीक किया, ज़िलों में जा जा के दौरा किया, ज़िलों के जो कलेक्टर्स थे जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनसे सौजन्य भेंट करके उनसे रिक्वेस्ट की, उनके TL की जो मीटिंग है उसमें शामिल हुए, अपने प्रोग्राम को हमने दिखाया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए, जब एक एक को जा जा के हमने सबसे बात की पूरे उस समय जो 18 जिले थे जब शुरुआती दौर पर, तो उन सारे ज़िलों में जाके हमने बताया, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करते गए, तो हमने देखा कि नेशनल लेवल पर बहुत सारे, पहले सत्येंद्र मेहता साक्षरता पुरस्कार मिलता था, उससे हम लोगों ने शुरुआत की, जो भी हम करते गए नया चीज़, हम जो भी नया नवाचारी हम कार्यक्रम करते गए जो हमने बाहर से जाके सीखा था, तो वो दूसरे राज्यों का पहले हमने दौरा किया, दूसरे राज्यों को देखा ये क्या अच्छा कर रहे हैं, तो हमने लगा कि छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने कलाकारों को जोड़ा, हमने यहाँ साहित्यकारों को जोड़ा, हमने

0: यहाँ पर कुछ नवाचारी शिक्षकों को जोड़ा। इस तरह से हम लोगों को हम जोड़ते गए और हर जगह की साक्षरता की बात हम करते गए, तो एक सत्येंद्र मैत्रा अवार्ड उस समय मिला। फिर आगे जाके सतत शिक्षा में अवार्ड मिला। फिर साक्षर भारत पुरस्कार को बताना चाहूँगा, 2013 में हमें हमारे जो हमारा जो यहाँ स्टेट लेवल की जो बॉडी है उसको केवल सेवाभावी बहुत कम लोग थे, सीमित संसाधन में हमने उस काम को शुरू किया था, तो उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, साक्षर भारत का पुरस्कार। और उसके बाद 2016 में भी हमें पुरस्कार मिला राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और ऐसे ही जिलों को, ग्राम पंचायतों को मिलाकर कई जिलों को, मैं यहाँ पर नाम लूंगा तो लंबी फहरिस्त है इसकी, तो 25 वर्ष में 25 अवार्ड, 25 से अधिक अवार्ड हमको अब तक राष्ट्रीय स्तर के मिल चुके हैं, जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में दिए
1: तो
0: हैं।
1: प्रशांत जी, ये हमारे लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को इस स्तर पर इसका आकलन किया गया। तो प्रशांत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि शिक्षा को लेकर आपका जो स्वप्न है और आपके जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को सफलता मिले और हमारा प्रदेश इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम भी भारत के नक्शे में एक पूर्ण साक्षर, पूर्ण शिक्षित और विकसित राज्यों की श्रेणी में दिखाई दें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे दीपक हटवार।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिले, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
4: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना, भूल भुलैया 3 फिल्म से। आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में आदित्य रिखारी के बोल, संगीत है लियो जॉर्ज का, डीजे चेतस और आदित्य रिखारी का।

आज का वादा तो सब करते हैं, लेकिन जो खुशियां आज के बाद तक बरकरार रखे वही वादे सच्चे हैं। सत्य प्रेम की कथा फिल्म से सुनिए ये गाना मनन भरद्वाज और तुलसी कुमार की आवाजों में, मनन भरद्वाज के बोल और इन्हीं का संगीत।

और जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आज के बाद के वादों को भी संभाल के रखे, तो आपका दिल तो भर ही जाएगा बहारा से। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से सुनिए श्रेया घोषाल, सोना मोहापात्रा की आवाजों में ये गाना, कुमार के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना टू स्टेट्स फिल्म से, अरिजीत सिंह, चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला गाना हमारे सभी बड़े दिल वालों के लिए 30 मार्क हां फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनके साथ दिया है श्रेया घोषाल ने, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

इस हाई नोट पे समाप्त करते हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जो आधारित होगा माधुरी दीक्षित पर, तो सुनना ना भूलिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर

था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अभी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

अक्टूबर 1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपहले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नच ले।

सन 2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आ

साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ।

0: आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 9:55 हुए हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने देश में घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित करने की जानकारी दी है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीन ब्रीफिंग में बताया गया कि पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए, जिनमें से करीब 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और इनके खुदरा मूल्यों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया है कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे 2 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। इनमें एक जहाज करीब 19,965 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 16 मई को कांडला पहुंचने की संभावना है, जबकि दूसरा जहाज 46,427 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 18 मई को न्यू मैंगलोर पहुंच सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है। श्री साय ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की है। इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि आम लोगों द्वारा पिछले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वॉकथन आज सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जनोपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। प्रदेश में आज अनेक जगह मौसम का मिजाज फिर से बदल गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित राज्य के 17 जिलों में आज अचानक तेज हवा

0: और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के दक्षिणी इलाकों में भी आकाशीय बिजली गिरने और वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और जशपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेश डेका करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। इसमें आज आप सुनेंगे पंथी गीत साधेलाल रत्नाकर और साथियों से, साथ ही सुनेगा देवार गीत राधे श्याम मनहर और साथियों से। कार्यक्रम में पहले सुनिए साधेलाल रत्नाकर और साथियों का गाया ये पंथी गीत।

0: साधेलाल रत्नाकर और साथियों का गाया पंथी गीत आपने सुना।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: साधे लाल रत्नाकर और साथियों का गाया पंथी गीत आपने सुना। गुंजे स्वर गांव के कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरा,

0: सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सूचना सुनिए। युवा जगत कार्यक्रम में फोन करें, गीत सुनिए। कार्यक्रम का प्रसारण महीने के तीसरे सोमवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 18 मई 2026 सोमवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 15 मई 2026 शुक्रवार को यानी आज प्रातः 10:30 से 11 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752-266592 और 310026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और गुंजे स्वर गांव के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं देवार गीत। गायक कलाकार राधेश्याम मनहर और साथी। और आज प्रसंग है नागेश्वर की विवाह की कथा।
2: देसी बखाना हो रतनपुर संगी ही आयो देवारे के जात। देसी बखाना हो रतनपुर संगी ही आयो देवारे के जात। मांगत खावत कटी जथे गहा आठो पहर दिन रात। मांगत खावत

कुदत बड़े होवेगा हर रतनपुर राजकुमार, यह रतनपुर राजकुमार सुघर नामे है सीताराम नायक, करे गैल शिकार यह करे गैल शिकार, यह करत शैल शिकार, ये करत शैल शिकार, यह करत

ताई ददा के हावे दुलर वाह उमर के अनुहार भर भर घोड़ा दौड़ावते संगी हेरा है गमाल गुजार भर भर घोड़ा दौड़ावते संगी हेरा है।

ऐसे बारात सजा थे कि देखे वर्णन नहीं किए जा सके। जेकर जैसन सवारी बना थे वो वही मजा थे और बारात के उत्साह में अथक जैसे सामान ले जाते हैं कि हफ्ता महीना 15 दिन भी अगर लग जाए तो कोनो बात के कमी झन पड़े। घोड़ा लदावत घोड़े चना या

0: कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज़ में, गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने, धुन तैयार की थी खयाम ने। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सूचना सुनिए। युवा जगत कार्यक्रम में फोन करें गीत सुनिए कार्यक्रम का प्रसारण महीने के तीसरे सोमवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 18 मई 2026 सोमवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 15 मई 2026 शुक्रवार को प्रातः 10:30 से 11 बजे के बीच की जाएगी, यानी कि अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। श्रोताओं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752-266592 और 310026। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: पीपर पारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगिता, नितिन वंशिका, भानुप्रिया दिवाकर। हटौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर राजकुमारी पटेल। शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अल्फैज खान, सादिया खान, अयाज खान। बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानू। और एठीपारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा और मोनिशा साहू। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत आपने सुना, फिल्म थी तुमसे अच्छा कौन है। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।

0: सुप्रभात, मैं हूं उमाशंकर पांडे। अब आप सुनेंगे आज की यातायात व्यवस्था पर आधारित हमारा दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है। यात्री एवं माल परिवहन बड़ी आसानी से हो रहा है। स्पष्ट है संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। इसी प्रकार सुगम आवागमन के लिए आप सभी से अपेक्षा है, जब भी सड़कों में हो किसी भी वाहन के साथ हो धैर्य रखें, वाहन की गति में संयम रखें और यातायात नियमों का सदैव सम्मान करें। मित्रों, जिस प्रकार हमारी सुरक्षित यात्रा के लिए वाहनों का पूर्ण स्वस्थ होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वाहन चालक को भी हमेशा तन एवं मन से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि स्वास्थ्य खराब है, शरीर के किसी भाग में दर्द है जिससे वाहन चलाने में कष्ट हो रहा है, तब मजबूरी में वाहन मत चलाइए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव कुशल वाहन चालन पर पड़ता है और ऐसी स्थिति में वाहन चालन खतरे से खाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि मन ठीक नहीं है, मन में किसी प्रकार का तनाव है, घर परिवार के किसी सदस्य अथवा ऑफिस में या अपने अधिकारी या मालिक से कोई विवाद हुआ हो जिससे मन आंदोलित हो, मन में कुविचार आ रहे हो, वाहन चालन में पूरा पूरा मन ना लग रहा हो, तब जबरन या व्यवस्था में वाहन मत चलाइए, क्योंकि ऐसी यात्रा सुरक्षित होगी इसमें 100% संदेह है। यदि वहां लेकर जाना अति आवश्यक है तो कुछ क्षण रुकिए, ठंडा पानी पिए, अपने छोटे बच्चे की याद करें और साथ संभव हो तो उससे बातें भी करें। यदि नियमित कोई दवा लेते हैं तो वह भी लीजिए। देखिए कुछ ही क्षण में सब सामान्य हो जाएगा, तब यदि मन की अनुमति हो तो जाइए अपना वाहन लेकर। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून दिल की आरती
3: सुरीली संदली।
1: छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, शांतिनगर भाटापारा से मिलव दास, कुलदीप संतोष दास, संदीप दास, अजीत दास, कुलदीप बिरझा, संजना और लक्की, इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम रजा, दतरंगी भाटापारा से नुखीलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु, ऋषभ सिंह। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं स्वामी फिल्म का गाना येसुदास की आवाज़ में। गीतकार हैं अमित खन्ना और संगीतकार राजेश रोशन।

आपकी पसंद कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया गीत। रचना अनजान की, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म है दो दिलों की दास्तान। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, आप हैं नेहरू वार्ड भाटापारा से, मोहनपारा कलतरा से अभिनव अभिषेक, उमा देवी साहू, महादेव भाटा मलेश्वर से डोमन सुमन मिथिलेश, तारनी सूरज, ज्योति रेयांश और गुड़िया ठाकुर, ग्राम रसेड़ा कलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या और डीकेश कुमार साहू, यहीं से वासु, डॉली और पूर्वेश साहू।

चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विकी नानू, रविंद्र सेन, यहीं से खुशी रौनक सेन, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर दो दिलों की दास्तान इस फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया गीत।

दो दिलों की दास्तान, इस फिल्म का गाना भी आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा था अनजान ने, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, इस समय सुबह के 11 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
0: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ श्रोताओ, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है, तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें, तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।

0: जैसे प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विवनेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेष अंक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
1: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। चांद पर चले, मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
2: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
1: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
2: अब सो जाओ।
1: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
2: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध

0: लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोल देना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहार।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962 सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: हां साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल सत्य का।
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना

साथ इंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में, संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत। और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर

गहरा गहरा नथु खेरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल, कवाली, पॉप गीत और लोकगीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है, तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय 11:55 होने वाले हैं। अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार

0: लुरिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने देश में घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित होने की जानकारी दी है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया गया कि पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए, जिनमें से करीब 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे 2 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य पार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है। श्री साय ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की है। इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पिछले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माई भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वॉकथन सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उपमहानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जन उपयोगी कार्यक्रम का प्रसारण करता है। प्रदेश में आज अनेक जगह मौसम का मिजाज फिर बदल गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित राज्य के 17 जिलों में आज अचानक तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के ठीक 12 बजे हैं। श्रोताओं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: मैं कनकलता।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की

0: मौके पर ऐसे गीत चुने गए हैं जिनमें पारिवारिक रिश्तों की भी बातें हैं और परिवार का आपसी संगठन, आपसी प्रेम भी दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक।

बिल्कुल, कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज सुनेंगे सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

देव बर्मन का संगीत कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो हैं ही, साथ ही है पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं महबूब के बोल, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

0: नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

0: ये दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे,
0: सच भाई हुए हैं।

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हों।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत। यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100K लिखा होगा, यानी कि 1,00,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इस पर ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं। गर्मी जहां झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नर्म फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए फिल्में ज्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं, और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झरा है, या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज्यादा पड़ती थी या दुलार ज्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए, हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला गीत।

मुकेश की आवाज में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफर में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इस इबारत में तो सिर्फ दो खेल के नाम हैं। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेकर लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है, जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे, वहीं वटवृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सुस्ताकर पेड़ ये कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे, कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौट कर आ जाएं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के जरिए जरूर आपको कुछ यादें ताजा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी, क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और ये सारी बातें बताते बताते हमारे साथी जब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वो पसीने की बात बहुत कर रहे हैं कि भाई बड़े पसीना छूटता है, गर्मी बड़ी तपती है। तो एक गीत वैसा ही सुना दें आपको, बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है।

हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारी एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गांव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो जरूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीजी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, छुपम छुपाई, पोसंपा, लड्डू कंचे, माफ कीजिएगा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोल पुलिस कैरम, ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर्र हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफर में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मजा नहीं आता जो रेल की गाड़ी में यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आंख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी बी के घर में नानी को ज्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो जरूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कहने कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। जमीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रखकर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाई चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में भाई। इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है, ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं और

0: अरे एक और साथी कह रहे हैं कि झुलसती हुई तेज गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफर करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपके साथ आपका ये सफर सुहाना हो, हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
1: तूने मुस्कुरा के देख

0: छुट्टी हो गई,
1: दूसरी ढूंढ ले लगाई।
0: मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, क्या मेरी छुट्टी हो गई। जान किस अदा से, जान किस

0: शहबाज अपनी हो गई सगाई सबके छुट्टी हो गई अपनी हो गई सगाई सबके छुट्टी हो गई तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई मेरी छुट्टी हो गई क्या मेरी छुट्टी हो गई जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूं, एरोप्लेन की आवाज आती है तो ऊपर देखता हूं, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूं, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूं। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई कोकोनट रंग पूछने वाला खेल

चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था। ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से झलने वाले पंखे याद करें हमारे एक साथी, जो उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी। हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है, तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए। तो आप हमें बताइए, तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं। किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गाँव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें

0: सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहां सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहां जाएं, और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें जहां के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है, और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते, और जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी। और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे। हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना। ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया, गिले डंडा, छुपन छुपाई, पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था, और हम दोस्त के घर का दरवाजा, हर दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह हैं, और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था। ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे, पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे, और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था, और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, आओ आओ आओ आओ, ये कैसे चले लाओ पैसे चले, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन, फिर तीन, फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो,
3: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
4: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक ड्री, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
4: क्या हुआ?
3: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन एक आलू, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
4: मगर नानी क्या कर रही थी?
3: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
4: कितनी गहरी?
3: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी रात।

0: की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15-15, दूना 30, 30, 45, 34, 75, 96, 97, 95, 98, 20, नंबर 35, गले में रस्सा।
1: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे, बहनले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते, एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी, उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे, फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी, लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं हैं, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं, और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए, तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे, उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि। वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है, बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज़ में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वहीं हमारे साथी ने बहुत साथी बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वट वृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, और शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना दे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बताया कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने की नानी की डांट तो नहीं पड़ी पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन से पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम पर के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2, 3, 5, 10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाते भाले होता हो

सकते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म कड़ाई या गिल्ली डंडा। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से, उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे, सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा। वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे एक और साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने कि गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी

छुट्टियों के वे मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो तो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे, पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्स मैन को देख कर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लाड साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना, और जैसा इसमें कहा गया भी, समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं, और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जन जागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगे।

समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए

हे बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह धारण करो।

0: वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
1: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं, माता का वंदन इतना ही उसका अर्थ है।

0: उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन प्राप्त है।
1: बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिल, अब्दुल हुसैन, दीदार

0: सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन प्राप्त है।
1: बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिल, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
0: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
1: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
0: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
2: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
0: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का।
3: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलय

वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबुधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने

0: एक निष्पत्ति क्या है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान

0: मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की अलीना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की ईगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेन्द्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवे ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला के इस गीत में।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: ओपन एयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हा?

रे भूमि बोलो जी है राधे जी, ये किसने सिखा दी संकट।

बाहर नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त

0: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं आत्मा का संगीत बन जाते हैं।

0: ना, अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक भरा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपको कॉल लगा है?
1: जी जी जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो टीन एजर्स बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, जवार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त दादा दादी, नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल। मैं भी बहुत निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं। जी,
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है, और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: जी मेरा नाम वर्षा धगट है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं।
1: बिल्कुल सही पहचान आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है।
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी, वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और सच
1: ये हर
0: मच
1: महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती हैं।
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सुना लीजिए आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउस वाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउस वाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीत लगाई करें।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी। मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी। मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ,
0: क्या बात है, बहुत
1: अपने लिए
0: अच्छी
1: समय
0: बात।
1: निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई
1: जी
0: को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं
1: जी परिवार
0: आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, उन्हीं के
0: जी
1: आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है। बहुत
0: जी
1: महत्व है सभी के लिए। जी
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे
1: जी
0: जीवन का आधार है ना? और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी बहुत
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती बहुत अच्छा लगता है
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे। हेलो सहेली, सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो
1: जी
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली,
0: नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी,
0: जी कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से,
0: शिरपुर से फोन लगाए।
1: शिरपुर जैन।
0: जी
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में? मेस चलाती हैं। क्या बात है, बहुत
1: हाँ,
0: अच्छी बात है।
1: हाँ,
0: ये तो
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके।
1: हाँ, खुशी मिलती खाने को आते जाते, वो अच्छा खाना बनाया बोलते, कभी कम ज्यादा हो जाता।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ, खाने की तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें
1: हाँ,
0: बिल्कुल भी ऐसा नहीं
1: खुश हो
0: लगता कि
1: जाते,
0: मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत पे फल मिलता, ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ तो
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: हेलो फरमाइश
0: हेलो फरमाइश।
1: गाने सुनते हो? क्यों रहता रेडियो दिन
0: दिन भर रेडियो चालू
1: भर?
0: रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो
1: हाँ,
0: सहेली, क्या
1: हेलो सायली।
0: नाम है आपका?
1: राजभाई, राजभाई धाकड़। बड़े
0: राजबाई धाकड़। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: गांव से। हाँ,
0: बड़े गांव।
1: गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं,
0: क्या बात है,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है। जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी
1: हाँ
0: परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना।
1: अच्छा लगे। देवर है, देवरानी है, देवर के मौड़ा मौड़ी है।
0: चलिए,
1: और
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनते हैं,
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, क्या
1: नमस्ते। मेरा
0: नाम है आपका?
1: नाम सुनंदा है। हाँ,
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है। हाँ
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए
1: हाँ
0: सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हमेशा
0: घर में रहना यानी बहुत से आम जो महिलाएं होती है ना, गृहिणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना?
1: बहुत
0: और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए।
1: हाँ, लक्ष्मी विलास भोले, खामगांव
0: जी कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: से।
0: खामगांव से लगा, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम खाली।
0: घर का काम करती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती हैं कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही
1: हाँ
0: जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: खुश है कि चलो कोई तो है।

0: घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है, घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ, हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप, कभी खुद की खुशी का काम करती हैं आप, यानी खुद के लिए। जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही दिन में बच्चों का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: खेत है, हमारा खेत में जाना पड़ता।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए न माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कॉल मुर्शिदाबाद छाटी से बोल रहे हैं।
1: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
0: हम हाउसवाइफ हैं, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो साहिल है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
1: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: हाँ, हम चाहे सिलाई उलाई भी करते हैं।
1: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
0: हम अकेले ही सब समेट लेते हैं।
1: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं कि ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
0: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
1: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
0: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
0: विविध भारती सुनते हैं जी?
1: जी। और आपने पसंद
0: दो महीना से छटपटा रहे थे, हाँ जी, कब 2 महीना पूरा होगा?
1: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: जसमती मैया तेरे बोले नंदलाला।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए
1: हाँ,
0: अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, ताज तालाब है, महाबलेश्वर है
0: जी, सातारा घूमने
1: जी,
0: लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है, नटराज
0: जी।
1: मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए, कभी शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी
1: हाँ,
0: ना आज कि फोन लग गया है।
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही।

0: हूँ। 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
1: क्या बात है, बहुत
0: मैं
1: अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और
0: जी
1: आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के
0: जी
1: लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
0: जी मेरा 57 एज है दीदी, 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ, साड़ी
1: क्या बात है।
0: सेंटर में। हाँ, सिटी साड़ी सेंटर में।
1: यानी आप व्यस्त और
0: आप
1: स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
0: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल से है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है। 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
1: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं
0: हाँ,
1: प्यारे प्यारे गीत सुन के।
0: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है,
1: क्या
0: उससे
1: बात है,
0: काम मेरा चल जाता हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है। नहीं तो देखिए, लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे
0: नहीं
1: सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
0: जरूरी है, बराबर है। दीदी
1: जी बताइए, कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती हैं?
0: बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूपों की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने
0: धूप
1: चुना है, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग काला।

0: मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह हैं 4002466 2, यानी 4002466 2. दूसरा नंबर है 2867028 2867028. और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022. आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूलकाय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, तिहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला

मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आईं? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थीं आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, यह वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे

शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी।

क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानि पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके।

कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा UPI पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: छाया गीत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: इश्क से

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुन रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथ ही हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: ಶಿವನೆ ಗಜಿರಾಜ್
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गाँव, बोड़ाझरिया, घासीडी, घड़गांव, बैगहवा, बैडाण, कंडराजा, चोरकी, पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, कुकुरगांव, कुदराझरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन

0: मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी पकरी ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट तौरेंगा और सीता नदी में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मुहकोट बहीगांव लिखमा जोगी बिरदो मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में महबूबा फिल्म का गीत। दीजिए अब पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आपकी परछाइयाँ इस फिल्म का गीत राजा मेहंदी अली खां का लिखा, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लीजिए पेश है ये गीत।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन की तर्ज पर आशिक फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए पेश है आमने सामने फिल्म का गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मोहम्मद रफी की आवाज में पेश है ये गीत।

आमने सामने फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आपने सुना। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम युवा जगत।

साथियों, स्वागत है आप सभी का बिलासपुर के एकमात्र नंबर वन यूथ रेडियो कार्यक्रम युवा जगत में। मैं हूं आपका साथी मनीष सलाम। आज की शाम में आपके साथ आपका मूड बनाने के लिए हमेशा तैयार। उफ साथियों, आज कितनी तेज गर्मी है, मैं तो पूरा पसीना से भीगा हुआ हूं। दोस्तों, आज घर से लेकर आकाशवाणी स्टूडियो तक का रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे अपने शहर से 120 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा मैं कर रहा हूं, और वो भी खाली पैर। खैर, जैसे तैसे आज स्टूडियो पहुंचा हूं, और इन सब के कारण मैं तो भूल ही गया कि इस वक्त मुझे आप सभी लोग सुन रहे हैं। वैसे दोस्तों, आज सुबह क्या जबरदस्त तूफान आया था ना, क्या तेज आंधी थी और हवा चली थी। बिजली की गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। आंधी तूफान के कारण दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उस पर यह तेज मूसलाधार पानी जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आतुर थी। आपको पता है, इस तूफान के कारण मेरे घर के आसपास किसी ना किसी के घर का टेंट उड़ गया, तो किसी के घर की टंकी फट गई, और किसी के कपड़े तो इधर से उधर ही उड़ गए। कुछ लोगों के घर के गमले, मटके और बाकी सामान भी तहस नहस हो गए। सच में आज का जो तूफान था वो महाभयंकर था। इस तूफान को देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आता कि यह मौसम गर्मी का है या बरसात का। पल पल मौसम अपना रंग बदल रहा है, ऐसे जैसे गिरगिट। खैर, ये मौसम तो यूं ही बनता बिगड़ता रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप अपना मूड मत बिगाड़िए, क्योंकि आपका मूड बनाने के लिए मैं हूं आपके साथ। तो जो कि लेकर आया है आपके लिए यह प्यारा सा गीत, जिसे लिया गया है फिल्म सतरंगा से।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म एनिमल का गीत सतरंगा, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया है शिनाज पुराणिक और गीतकार हैं सिद्धार्थ और गरिमा। दोस्तों, इस शानदार गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए, और हम बात कर रहे थे मौसम की। गर्मी का मौसम है और इस मौसम में बारिश, ऐसे में इस बदलते मौसम में न जाने कितनी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। अगर हम अभी अपने शहर बिलासपुर के बारे में बात करें तो यहाँ के हॉस्पिटलों में ना जाने कितने ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। कहीं कोई सर्दी जुकाम का मरीज है, तो कहीं कोई बुखार या डेंगू मलेरिया की शिकायत लेकर आया है, तो कोई कुछ और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लेकर पीड़ित है। आए दिनों मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन दिनों में होने वाली सारी समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में जितना जल्दी हो सके किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेकर हमें उनसे कंसल्ट लेना चाहिए। तो साथियों, आज क्रम स्वास्थ्य जागरूकता में हम बात करेंगे गर्मियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्या पर, जहां हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर नवनीत, जो हैं बिलासपुर सिम्स के मेडिसिन विभाग के सहायक प्राध्यापक। आइए सुनते हैं उनसे उनकी बातचीत। युवा जगत के आज क्रम में हमारा क्रम है स्वास्थ्य जागरूकता, और इसमें हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई स्वास्थ्य की संबंधी समस्याओं की, और उसका निराकरण भी हम इसमें देते हैं। साथियों, आज हमसे जुड़े हुए हैं हमारे बिलासपुर शहर के ही हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत जी, और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। मैं डॉक्टर नवनीत कुमार अग्रवी, MD मेडिसिन। मैं सिम्स में सहायक प्राध्यापक एवं कंसल्टेंट के

0: मैं पदस्थ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: सर, हमने अभी मई के माह में हम एंटर कर चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं, हालांकि मौसम तो अभी अप एंड डाउन चल रहा है, आंधी तूफान बारिश, और इसमें लगभग गर्मी गर्मी जो है मेहमान की तरह हो गई है, लेकिन फिर भी गर्मी से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत सारी होती हैं और अक्सर हम बहुत सारी समस्याओं से भी पीड़ित होते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या क्या इस गर्मी में हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
2: देखिए मनीष जी, इस मई की तेज गर्मी में लू लगना, डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजनिंग, त्वचा संबंधित समस्याएं, आंखों में जलन, थकान, मच्छर जनित रोग सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं जी।
1: तो क्या इस समय बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों पर गर्मी का असर अलग अलग पड़ता है?
2: देखिए मनीष जी, बिल्कुल, बच्चों और बुजुर्गों और युवाओं पर इसका असर अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग जो रहते हैं उनकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए वे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा युवा जो रहते हैं वो धूप में काफी समय तक बाहर रहते हैं, जिसके कारण उनमें लू लगने का खतरा ज्यादा रहता है और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं।
1: तो लू लगना वास्तव में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे कम उम्र के भी हैं, तो हम शुरू में जब हम बोलते हैं, मम्मी पापा हमें डांटते भी हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो आपको लू लग जाएगी, लू लग जाएगी, लेकिन ये लू लगना आखिर क्या होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं?
2: मनीष जी देखिए, जब हम बहुत समय तक बहुत ज्यादा धूप पे काम करते हैं, तब क्या होता है, हमारे शरीर का जो तापमान रहता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और शरीर जो रहता है वो खुद को ठंडा नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर में जो हमारा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है वो हमारा ब्रेन रहता है। इस समय ब्रेन का जो थर्मोस्टेट पॉइंट रहता है वो एक अपना नियंत्रण खो देता है, जिसके कारण शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें तब लू लगती है। इसके शुरुआती लक्षण हैं तेज बुखार आना, चक्कर आना, कमजोरी होना, सिरदर्द होना, उल्टी और बेहोशी। ये सब लू के कॉमन लक्षण होते हैं जो हमारे आसपास हमको देखने को भी मिल जाते हैं, कि मरीज को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है, कोई धूप पर बहुत ज्यादा काम कर दिया है तो चक्कर आने लगता है, बेहोशी होने लगती है, थकान बहुत ज्यादा होता है, उल्टी भी हो सकती है, लूज मोशन भी देखने को हमको मिलता है। तो ये सब लू के प्रभाव होते हैं जो काफी तेज की समय धूप में रहने के कारण देखने को मिलते हैं।
1: यानी कि अगर इन सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़े, अगर जैसे कान आना, लूज मोशन होना, तो ये सारे लक्षण जो है वो हमारे लू लगने के लक्षण हैं।
2: जी बिल्कुल, अगर गर्मी के समय कोई भी मरीज हमारे पास आता है, हम उससे यही पूछते हैं कि आपने क्या धूप में बहुत ज्यादा काम किया था या धूप में बहुत ज्यादा समय तक आप घूमे थे। मरीज अगर ऐसी हिस्ट्री मिलती है हमको और उसके शरीर का तापमान उस समय बहुत ज्यादा है, 102 डिग्री या 103 डिग्री मिल रहा है, थकान बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन के लक्षण है, तो हम उसको जनरली मानते हैं कि लू लग गया है या उसके अकॉर्डिंगली ही हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं मरीज का।
1: तो सर, ऐसे में युवाओं और बाहर काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे हमारे रिक्शा चालक भाई लोग हैं और भी अन्य जो ऑफिस जाते हैं हमारे, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स भी, हमारे अभी परीक्षा का मौसम चल रहा है तो इस धूप में आना जाना उनका हो रहा है, तो वो कैसे इस लू से बचने के लिए क्या क्या सावधानी उन्हें रखनी चाहिए?
2: देखिए, जो काम है, जो काम कर रहे हैं उस पर तो उनको यही सावधानी दी जाएगी कि आप हल्के और सूती कपड़े पहने, सिर को ढककर रहें, नियमित रूप से पानी या ओआरएस को पीते रहें। इसके अलावा आप शरीर में जितना ज़्यादा पानी या हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे उतना अच्छा आपका शारीरिक स्वास्थ्य रहेगा, लू लगने के चांसेस कम रहेंगे। एवं जिनको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो वो कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप पर ना निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, जैसे टोपी पहनकर, सिर पर गमछा रखकर, इन सब चीज़ों के साथ निकलें और समय समय पर पानी, ओआरएस और अन्य पेय द्रव्यों का सेवन करते रहें।
1: तो सुना ना आप सभी ने साथियों कि आपको कितनी केयर और कॉशंस लेनी है अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, और ऐसे ही धूप में नहीं निकल जाना है आप सभी को। तो सर, डिहाइड्रेशन होने पर शरीर कौन कौन से संकेत देता है?
2: देखिए मनीष जी, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसको बार बार प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा, कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, है ना, कम पेशाब का आना, थकान ज्यादा लगना, हाथ पैरों में दर्द का रहना, ये प्रायः जो डिहाइड्रेशन के हैं लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि केवल पानी ही पर्याप्त है तो पानी हमेशा पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलता है, पसीना के साथ हमारे शरीर में जो नमक रहता है या जो मिनरल्स रहते हैं उसकी कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमें ओआरएस पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, छाछ हो गया, इन सब का भी सेवन करना चाहिए।
1: अक्सर जब हमें गर्मी लगती है तो हम, जैसे कि मैं ही अगर मैं बात करूं, अपनी बात करूं, तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीना प्रेफर करता हूं, तो क्या वो भी सेहत के लिए अभी गर्मी में पीने के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर इसे स्किप करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है?
2: देखिए, कोल्ड ड्रिंक अगर हम बोले तो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे जो नेचुरल पदार्थ हैं, छाछ की बात करते हैं, लस्सी की बात करते हैं, नींबू पानी की बात करते हैं, ओआरएस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है ना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में आप देखेंगे तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहते हैं, है ना, शुगर की मात्रा भी काफी रहती है, तो वो प्यास बुझाने की जगह डिहाइड्रेशन ज्यादा करवाते हैं।

0: है ना। तो हमको बेहतर है कि हम जो नेचुरल पदार्थ हैं जैसे कि नींबू पानी, नमक पानी, या फिर हम बात करें गन्ने का रस हो गया, छाछ हो गया, लस्सी हो गया, इन सब चीजों का हम सेवन करें।
1: क्या क्या पीना चाहिए आपने तो हमें बता दिया, लेकिन हम देखते हैं कि गर्मी में हमें भूख भी बहुत कम लगती है, खाना आसानी से पचता भी नहीं है। गर्मी में खान पान से जुड़ी लोग ऐसी कौन सी गलतियां ज्यादा करते हैं?
0: देखिए गर्मियों में क्या होता है, जैसे हम अगर अभी मार्केट पर निकल जाएंगे तो हम देखेंगे कि चाट गुपचुप के ठेलों पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है ना, या जो तले भुने फास्ट फूड रहते हैं उन स्टॉल्स पे बहुत ज्यादा भीड़ हमको देखने की मिलती है। तो हम कोशिश करें कि गर्मी में हम जितना भी रहें बासी भोजन हो गया है ना, और ज्यादा तला भुना खाना, फास्ट फूड, बहुत ज्यादा हैवी फूड, जो खुले में पदार्थ बिक रहे हैं उनसे, उन सब चीजों का सेवन हमको नहीं करना चाहिए है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम पानी भी कम पीते हैं बट खाना बहुत सारा चीजें खाते हैं, जैसे कि चाट गुपचुप हो गया, समोसे हो गया, चाउमीन, मंचूरियन, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जो स्वास्थ्य है उसको, उस पर विपरीत असर डालते हैं। तो हमें गर्मी में कोशिश करना चाहिए कि हमें अच्छे हाइड्रेटेड फल फूल का ही उपयोग किया जाए, घर में बने हुए कम तेल मसाले की चीज़ों का सेवन करना चाहिए, इसके अलावा हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए।
1: सर आपने हमें यह तो बताया कि बाहर के खान पान से हमें बहुत सारी तकलीफों तक हो सकती हैं, और लेकिन हम जो फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी अभी हम जो जी रहे हैं, लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि हम जो युवा हैं वो जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हम अपने सेहत पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो क्या क्या जंक फूड खाना वाकई में ठीक है, और या फिर क्या क्या अगर खाएं भी तो कैसे खाएं?
0: देखिए आजकल की जो जनरेशन है अगर हम बात करें तो आजकल जंक फूड का इतना ज़्यादा उपयोग बढ़ गया है जिसके कारण आजकल आप देखेंगे यंग अवस्था में ही लोगों पे मोटापा बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रहा है। यंग एज में ही आपको डायबिटीज़ के लक्षण देखने को मिलते हैं, यंग एज में ही आपको बहुत सारे ऐसे यंग युवा हैं जो ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित रहते हैं है ना, बहुत सारे युवा हैं जो पेट की समस्याओं से भी ग्रसित रहते हैं, बार बार पेट का साफ नहीं होना या पेट में भारीपन होना, ये सारी समस्याएं दिखती हैं जो मोस्टली जंक फूड जो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं इसका दुष्परिणाम है ना। इसके कारण आजकल जो यंग जनरेशन में हम जो एक बात करते थे कुछ समय पहले तक कि डायबिटीज आपको 50 साल के बाद मोस्टली मिलता है, शुगर आप ब्लड प्रेशर आपको बुजुर्ग अवस्था में मिलता है ना, तो आजकल जंक फूड जो हम इतना ज्यादा खा रहे हैं जिसके कारण आजकल आप 25 साल के बच्चे को भी डायबिटीज देख सकते हैं है ना, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं देख सकते हैं एवं उसके कॉम्प्लिकेशन भी आप देख सकते हैं, पेट से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं है ना। इसके अलावा क्या होता है जो खुले में खाद्य पदार्थ जैसे हम खाते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, इन सब का भी खतरा बढ़ जाता है, और साथ साथ गर्मी में ये होता है कि जो बैक्टीरिया रहते हैं इन सब पदार्थों पे वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, जिसके कारण हमें गर्मी में तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, जो बोलते हैं कि अति सर्वत वर्जित है ना, तो अगर आज की जनरेशन आप देखेंगे तो नॉर्मल जो हमारा खाना पीना है उनको छोड़कर, फल फूल को छोड़कर आजकल फास्ट फूड की ओर ही आकर्षित हो रही है, तो हमें उनको यही सलाह है कि भाई हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको रखना है ना, खाने में आपको फल फूल, हरी सब्जियां, इन सब का अत्यधिक सेवन करना चाहिए। फास्ट फूड अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको आपको यंग अवस्था में ही या युवा अवस्था में ही उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं आजकल जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है ना, पेट की समस्या, कैंसर भी इसके कारण जो होते हैं बहुत ज़्यादा केसेस आजकल देखने को मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होते हैं एक इनिशिएटिव फैक्टर के रूप में काम करता है यंग एज में।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने, और हम अक्सर आकर्षक पैकेजिंग और एडवर्टीजमेंट्स के चक्कर में और फास्ट फूड कल्चर या फिर कैफेज और रेस्टोरेंट्स के चक्कर में हम जाते तो हैं, पोषक तत्व तो उसमें की कमी भारी होती है, और फिर उसके बाद और जिसे हम बीमारी नहीं भी मान, कब्ज हो गई या फिर हमारे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी होते हैं उसे हम अनदेखा कर ही देते हैं। सर ये सब बातें हमने खाने पीने और चीज़ों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन एक और प्रॉब्लम है सर जो हमारा, हम इस गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि मच्छर बहुत हो जाते हैं और जिनके कारण हमें इनसे होने वाली बीमारियों का भी खतरा हो जाता है, इनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं।
0: देखिए क्या होता है, जो गर्मी का सीजन होता है मई जून है, अभी आप देख रहे हैं कभी बारिश हो रही है कभी धूप तेज निकल रही है, तो गर्मी और नमी होती है जिसके कारण मच्छर जो रहते हैं तेजी से पनपते हैं। इसके अलावा घर में रखा हुआ कूलर, उसमें पड़ा हुआ पानी मच्छरों के लिए ब्रीडिंग प्लेस का कारण बनता है, इसके कारण मच्छर बहुत ज्यादा फैलते हैं और मच्छर से होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, वो सब बीमारियां हमको देखने को मिलती हैं।
1: तो सर इनसे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए?
0: ये कर सकते हैं कि हमारे घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का उपयोग करें एवं मच्छर से होने वाली बीमारियां जो डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, इन सब के लिए हमें जागरूकता फैलाना चाहिए एवं मच्छरों को पनपने वाले स्थानों पर नियमित तौर पे हमें साफ सफाई करनी चाहिए एवं

0: आवश्यक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और हमें आसपास अपने सफाई का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए ताकि मच्छरों से हम बच सकें। सर, और भी बहुत सारी समस्याएं होती है तेज धूप के कारण, और जिसे हमें त्वचा और दूसरी चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी हमें सामना करना पड़ता है गर्मियों में?
0: जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो त्वचा में जलन होने लगती है ना, एलर्जिया भी हो जाती है, घमौवियाँ होने लगती हैं, आँखों में जलन होता है, लालपन आ जाता है, सूखापन आ जाता है, ये सब समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो हम इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, साफ़ और सूती कपड़े पहने, शरीर को ठंडा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा धूप से बचें, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ही हम घरों से बाहर निकले, और पर्याप्त पानी पिए, तो इन सब समस्याओं से हम बच सकते हैं, है ना। धूप से बचने के लिए आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं, गॉगल्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सन जो बहुत तेज़ धूप होती है उसमें यूवी रेस होती है, तो सनस्क्रीन हमें उन किरणों से बचाता है।
1: तो सुना आप सभी ने साथियों कि कितना जरूरी है इस गर्मी में अपना ध्यान रखना, और हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी तरह से हमें ये समझाया भी कि हम किस तरह और क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके हम इन स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर हम पर आती हैं तो कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और उनसे कैसे बच भी सकते हैं। तो सर, आपसे बहुत विषयों पर बातचीत हुई और अब हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। ऐसे में अब हम जानना चाहते हैं युवा साथियों के लिए आपका संदेश।
0: युवा साथियों के लिए मेरा यही संदेश है कि हमें गर्मी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ बाहर निकलना चाहिए, पर्याप्त पानी पिए, साफ सफाई का अपने आसपास ध्यान रखें, संतुलित भोजन करें, और अपने साथ साथ परिवार और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: आज के हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए सर आपका आप बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि अगले क्रम में फिर आपसे किसी और विषय में बातचीत होगी और हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद मनीष।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
4: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
3: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: दोस्तों, अभी आपने सुना क्रम स्वास्थ्य जागरूकता में डॉक्टर नवनीत कुमार अग्रहरि जी की, जो हमें बता रहे थे कि हम गर्मियों में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से कैसे बचें। साथियों, हॉस्पिटल में लाइन लगने से अब तो आप बच ही जाएंगे, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों से बचना बड़ा ही मुश्किल होगा। दोस्तों, मैंने तो सोच लिया है कि अब अपनी साइकिल निकाल ही लूं और फिर से बढ़ती पेट्रोल की दाम और उसकी किल्लत को ठेंगा दिखाते हुए फिर से बेफिक्र होकर पैडल मारते हुए पूरे शहर में घूमूं फिरूं। इससे मैं फिट भी रहूंगा और पैसे भी बचेंगे सो अलग। दोस्तों, अगर आप भी घबरा कर टंकी फुल करवाने के लिए बेवजह परेशान हो रहे हैं, तो अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इस वैश्विक संकट में आप सभी ऊर्जा के बचत के अन्य तरीकों को अपनाएं। आशा है कि आप सभी इस संकट में एक साथ खड़े रहेंगे, वैसे ही जैसे एक परिवार एक देश आपके मुश्किल समय में खड़ा रहता है। तो दोस्तों, परिवार इंसान की सबसे बड़ी और पहली पाठशाला होती है, जो हमें सबसे मजबूत सहारा देती है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, परिवार वो ताकत है जो हमें कभी गिरने नहीं देती। जब कभी हम किसी मुसीबत में होते हैं या कभी खुश होते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे परिवार की ही याद आती है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और सभी का निस्वार्थ प्यार बिना किसी शर्त के मिलता है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, परिवार साथ खड़ा रहता है। हम जो भी हैं, जो भी सीखते हैं, उसकी शुरुआत घर से ही होती है। ईमानदारी, इज्जत, मेहनत सब परिवार ही सिखाता है। त्योहार हो या गर्मी, सर्दी की छुट्टियां हो या सबका साथ एक बैठना, खाना, हंसी मजाक, ये छोटी मोटी चीजें ही तो है जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाती हैं। दुनिया में हमारा नाम कुछ भी हो, घर में हम सिर्फ बेटा, बेटी, दीदी, भैया होते हैं, रिश्ता ही सबसे सच्चा है।

आज की भाग दौड़ वाली जीवन शैली में लोग काम और पैसों के पीछे भागते भागते अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाते। ऐसे में हमें यह बात याद रखना चाहिए कि पैसे तो कभी भी कमा लेंगे, पर जो वक्त परिवार के साथ बिताने से छूट गए वो वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, परिवार है तो सब कुछ है। इसे वक्त दीजिए, इज्जत दीजिए और प्यार भी, क्योंकि असली ताकत यही है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आइए मिलकर हम संकल्प लेते हैं कि आज से हम और हमारा वक्त काम के साथ साथ हम अपने परिवार को भी देंगे और उनके साथ ढेर सारी मीठी मीठी यादें भी बनाएंगे। तो आइए इन यादों के साथ आज की शाम को और शानदार बनाते हैं हम अपने कार्यक्रम के इस गीत।

ओह दोस्तों, आप सभी से मिलना, बातें करना मुझे कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये सिलसिला कभी खत्म ही ना हो। पर ये थोड़ी सी दूरी हमारे और आपके बीच के प्यार को और भी बढ़ाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और सुनते रहेंगे युवा साथियों का मन पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत। और अब इजाजत दीजिए अपने साथी मनीष को।

युवा जगत, आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आज रात 8 बजे सुनिएगा हर दिल की आवाज आकाशवाणी परिचर्चा, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर के यादगार पल। प्रतिभागी होंगी श्रीमती नर्मदा नम्रता वाजपेयी, श्रीमती मीनू सिंह, संपादन संचालन श्रीमती संज्ञा टंडन का है, प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीन की। ईमेल करें, गीत सुने, कार्यक्रम पेश करेंगे श्रोताओं 6:20 पर और शाम 7 बजे ग्राम सभा में। शाम 7:20 पर बेरा के गोठ का विषय रहेगा ऊर्जा बचाओ पैसा बचत। फोन इन कार्यक्रम में ड्रैगन फ्रूट की उत्पादन तकनीक विषय पर श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं डॉक्टर अनिल शुक्ला विषय वस्तु विशेषज्ञ। कार्यक्रम का संचालन किया है वीरू भैया ने। मौसम मंडी और सामयिक सुझाव भी आपके लिए होंगे। रजनीगंधा आज पेश करेंगे रात्रि 8:25 पर।

कल के कार्यक्रम में मैं कल सुबह 6:05 पर आराधना पेश करेंगे। 6:30 पर खेती की बात में सामयिक सुझावों का विषय रहेगा। ग्रीष्मकालीन रमकेरिया की उन्नत खेती, वाचन स्वर त्रिलोकी सिंह छत्री का होगा। 6:35 पर रामचरित मानस का गायन सुनिएगा। 6:45 पर चिंतन में श्री हरि प्रकाश वत्स का आलेख सुनिएगा मनोबल विषय पर। सुबह 7:05 पर आज सुबह हम पेश करेंगे और सदाबहार लग में होंगे 7:30 पर। सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 कार्यक्रम बातों बातों में, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। सुबह 10 अमराई में सुनेगा रामेश्वर खांडे, राम नारायण ध्रुव और साथियों के गाय छत्तीसगढ़ी लोकगीत। 10:30 पर पेश करेंगे नए तराने। श्रोताओं कल शाम 5 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। चित्रपट संगीत पेश करेंगे शाम 5:05 पर। शाम 5:35 पर 6:20 पर और शाम 7 हम पेश करेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ग्राम सभा में शाम 7:20 पर बेरा के गोट का विषय रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना और मौसम ऐप और किसान। किसानवाणी में आज के बाद पुष्प विकास कार्यक्रम विषय पर सुनेंगे। भेंटवार्ता में सुनेगा टिश्यू कल्चर केले की उन्नत खेती विषय पर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी से कजरी बहनी की बातचीत। मौसम मंडी और सामयिक सुझाव भी होंगे किसानवाणी में। रात 8 सुगम संगीत में सुनेगा शंकर महादेवन को। रात 8:15 पर पेश करेंगे रजनीगंधा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

FM बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन्हा पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। और आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी रहाले वाकाथन के आयोजन करेगिस। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हकीन के विद्यार्थी सरकार के प्राथमिकता है और सरकार ओमन बर संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान हकीन कि NTA हा मेडिकल में प्रवेश बर नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून के आयोजित करे के घोषणा करे है। शिक्षा मंत्री हकीन के वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होवैया नीट UG परीक्षा अवैया बछर ले कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम ले होही। श्री धर्मेंद्र प्रधान बताएं कि विद्यार्थी मन परीक्षा बर अपन पसंद के शहर चुने के मौका मिलही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन्हा पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। दिल्ली में अब पेट्रोल के कीमत 97.77 रुपया प्रति लीटर जबकि डीजल के कीमत 90.67 रुपया प्रति लीटर हो गए है। उन्हें राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दाम 103.58 रुपया और डीजल के दाम 96.57 रुपया हो गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशवासी मन ले पेट्रोल और डीजल के उपलब्धता ला लेके चिंता नहीं करे के अपील करीन है। उमन किहिन के छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडारण मौजूद है और प्रदेश के जम्मू आयल डिपो में नियमित रूप ले ईंधन के आपूर्ति करे जाते। मुख्यमंत्री है बताइन कि राज्य सरकार और आयल कंपनी आपसी समन्वय के संग स्थिति में सरलक नजर बनाए हुए है। उमन किहिन कि केंद्र सरकार घलो ईंधन आपूर्ति लले के जरूरी तैयारी करे है और कोनो तरह के समस्या नहीं है। श्री साय लोगन मल्ले अफवाह ऊपर ध्यान नहीं दे और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेके आग्रह करें। यही बीच राज्य के खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले हकीन कि आम लोगन डहाले पाछू 2 दिन में घबराहट के सेती पेट्रोल डीजल के खरीदी करे गए है जेखर ले एखर खपत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज हुए है। एखर सेती कुछ एक जगह में कृत्रिम अभाव के स्थिति बन गए है। ओमन लोगन मल्ले कोनो भी तरह के अफवाह या घबराहट के स्थिति में पेट्रोल डीजल के खरीदी नहीं करे के अपील करीन है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण के अगुवाई में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल धमतरी जिला के मगरलोड विकास खंड के दौरा करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजना के निरीक्षण करें। इस दौरान ओमन सुरक्षात्मक सिंचाई आजीविका संवर्धन और मृदा के संग्रह जल संरक्षण ऊपर केंद्रित आने आने पहलू के समीक्षा करें। उन्हें केंद्रीय सचिव सांकरा गांव में वाटरशेड विकास घटक और मनरेगा के अंतर्गत निर्मित स्टाप डैम के घलो अवलोकन करें। प्रतिनिधिमंडल सौगा गांव में 5 एकड़ के वृक्षारोपण स्थल के घलो दौरा करें जहां 1000 ले ज्यादा अमरूद और लिमों के रुख लगाए गए हैं। इसने केंद्रीय सचिव धमतरी में नक्शा प्रोजेक्ट के प्रगति के निरीक्षण करें। इस दौरान ओमन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन समय सीमा में पूरा करे और सर्वे टीम के संख्या बढ़ाए के निर्देश कलेक्टर लदिन। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ए बखत गर्मी के मौसम में लू ले बचाव और सावधानी ऊपर स्वास्थ्य विभाग के एकीकृत रोग निगरानी परियोजना रायपुर के अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 16 मई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी

समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़बो माचे समाचार कोती। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित करेगिस। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आने आने संकाय में प्रावीण्य सूची में जगह पाए मेधावी विद्यार्थी मन ल 13 स्वर्ण 7 रजत और 2 कांस्य पदक दीन। संग्रह 128 शोधार्थी मनला PhD, 518 विद्यार्थी मनला स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थी मनला स्नातक के उपाधि देगिस। समारोह ला संबोधित करत राज्यपाल ह विद्यार्थी मनला बधाई देत किहिन के दीक्षांत समारोह छात्र जीवन के एक बहुत बड़ा मौका होते। ये केवल डिग्री पाए के दिन नहीं है बल्कि भविष्य के शुरुआत के प्रतीक हरय। श्री डे कहा किहिन के आज कृषि परिवर्तन के दौले गुजरत है। किसान और युवा मन लघलो आधुनिक और उन्नत खेती कोती पढ़ना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री है विद्यार्थी मन ले ड्रोन AI और डिजिटल तकनीक ले खेती ले जोड़ के किसान और वैज्ञानिक मन के बीच सेतु बने के आह्वान करिन। उमन किहिन कि कृषि विश्वविद्यालय है कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करे है और वैज्ञानिक ढहर ले विकसित नवा फसल किस्म और आधुनिक तकनीक ले किसान मन ला बड़का फायदा मिला थे। समारोह में कृषि मंत्री रामेचा नेताम नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ अशोक कुमार सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल मौजूद रहीन। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी डहाले वाकाथन के आयोजन करेगीस। एमा आकाशवाणी के कर्मचारी सेवानिवृत्त अधिकारी समाचार वाचक श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा रहीन। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुईन। वाकथन आज बिहनिया लगभग 7 सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी भवन ले शुरू हुईस। ए शहर के आने आने रद्दा ले होत आकाशवाणी परिसर में ही सिराईस। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर है बताएं कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 बछर के सफल यादगार बनाए बर करेगे है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के संग आकाशवाणी के स्थापना 8 जून 1936 में हुई रहीस। ये देश के सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जौन आने आने भाखा में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत मनोरंजन प्रेरक और जन उपयोगी कार्यक्रम के प्रसारण करते। रायगढ़ जिला के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन हा मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स डबल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते है। ये उपलब्धि पर वित्त मंत्री OP चौधरी हा दिव्यांशु ला फोन करके बधाई दीन है। उमन विश्वास जताइन कि दिव्यांशु भविष्य में घलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश और प्रदेश के नाम रोशन करत रही। उन्हें स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांशु है किहिन कि प्रदेशवासी मन के स्नेह और निरंतर प्रोत्साहन ही उमल्ला ए शिखर तक पहुंचाए के ऊर्जा दे है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई के केरल तट में पहुंचे के संभावना जताए है। यही बीच छत्तीसगढ़ में अवैया 24 घंटा के दौरान कई जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना है। उन्हें एक दो जगह में गरज चमक के संग अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी घलो दे गए है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में कोनो विशेष बदलाव होए के संभावना नहीं है जबकि 17 मई ले अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करे जा सकते है। आज बिहनिया मौसम के मिजाज बदले के सेती राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ एक जिला में तेज हवा के संग तेज वर्षा हुईस। एखर ले लोगन मल्ला गर्मी ले कुछ राहत मिलीस। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। और आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी डहाले वाकाथन के आयोजन करेगीस। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम, ईमेल करें, गीत सुनें।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में। हाजिर हैं आपके ईमेल लेकर बुंदेलगढ़ उत्तर प्रदेश के ये श्रोता हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, गिर्रा पलारी से वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू, आशीष, कपिल साहू, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली छत्री, रोहासी से मुकेश, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या, अजीता, गोवर्धन रोड से दुर्गा कुमारी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन, सादुर शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, हटरी चौक भिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका देवांगन, सनवा से दिलीप मालाकार, बाबूलाल चौधरी, निर्मला, सुनीता मालाकार, मुस्कान, योगेश, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण और कपिल, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजा, साहिबा नवाज हसन, बाबू अहद, मिफ्रनाज, बेबी चाहत, सहारनपुर से सईद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया ना इब्राहिम, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पूनाराम, कृष्ण देवांगन, पुड़गहन से राम दुलारी, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति, उत्तम नगर दिल्ली से सनम बोधराज, खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, भिलाई से मुकेश, सरिता, गौरव, गरिमा, भानगढ़ मंगवाल से भरतराम पटौदी, जयंती, हेमंत, उमंग, मोक्ष पटौदी, साल्हे भाटा, महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिव्यांशु खेमू, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, भूत कछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली, साई समर्थ और धनंजय कटनकर, सरोजा अमरावती से कमरूला ठेकेदार, नसीम बेगम, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लीलू और ऋतु सिंह। आप सभी की फरमाइश पर सुना रहे हैं आपको नीलकमल फिल्म का गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। साहिर का लिखा गीत है, रवि का संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, साहिर का लिखा, रवि का संगीतबद्ध किया हुआ, नीलकमल फिल्म का ये गीत था। और अगले गीत के लिए फरमाइशें आप सभी श्रोताओं की। लहपटरा सरगुजा से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान, लल्लू, बल्लू, घनु, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल, राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े, सिमरन और इनके परिवार के सदस्य, मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, सायना, मैंडी शर्मा, मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना, चेतन भगत, यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर, अर्पिता, भाटाबर से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी, शुभम, सौरभ, पानीपत से अनिल कटारिया, मंजू, नरेश मल्होत्रा, ज्ञान भूषण शर्मा, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, विजेंद्र, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द, राहुल, चौटाला हरियाणा से दारा, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा।

भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, नागरकोहरा राजनगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, बीबी आराध्या, तेलंगाना निजामाबाद से शेखल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख, रहीमुन्ना, मारहरा दरवाजा एटर से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अनम, रसीद वारसी, शहनाज अब्बासी, जवाहर नगर दूर से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, नेहरू आड़ भाटापाल से प्रेमला साहू, भूपेंद्र दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार, सहारनपुर से सोनाली, आशा, सुरेश, पथिक, कृष्यु, दयापुर बावली से गजानन, नवदीप, विश्वदीप, अवंतिका येले, यवतमाल से पंजाब, यशोधरा, श्राव्य, रामटेके, टीकमगढ़ से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश चौहरी, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमिष शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, रेशमा थापा, सोनम, फातिमा थापा, आदिबा और आसमा थापा, भिलाई से मुकेश, सरिता, गौरव, गरिमा शर्मा, पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सहज, श्रोक अग्रवाल, नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा, बेबी जिगरा डावर, बेबी आयशा खत्री, घूंघट रेडियो श्रोता संघ से धर्मपुरी के श्रोता हैं मूसा जी खत्री, ईशा जी और जाकिर खत्री, सावतपुर से ऋषि, रितेश, कंचन और माही सेल, बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलास, शरद, मयंक, विमल आभाणी, लालेंद्र होलेंद, आचार्य रोनी जैन, प्रमोद दम्माड़ी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया आयन बाबू, बाजार और मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता पलक, लुबना और यश मंसूरी। सुना रहे हैं आप सभी को दोस्ती फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। मजरूह का लिखा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति गाभरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, देवरी भाटापारा से कन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी उमेश नेहा और वान्या सिंगरौल, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना विट्टू कुमार, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, भाटापारा से बचकावन, मोतीलाल यादव, सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी, भाटापारा से विष्णु साहू, पूरा वीरा हर्ष, कुमकुम और योगेश्वरी साहू, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, अजीत और अमित वर्मा, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से, भाटापारा से हिमकेश्वर, करण, राहुल, चंपा साहू, कुंभारगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ, शौर्य नामदेव, पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, पेपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, कोरासी भैसा से पवन कुमार, क्रांति देवी, पंकज साहू, सुष्मिता, दीपिका साहू, पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि, कृष्णा घोड़गे, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, रेडियो क्लब बिहार से वसीम अकरम, शबनम, गुड़िया खातून, सोंगा धमतरी से रीना सेन, पिंकी और कांति सेन, गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका, ममता अरोड़ा, महादेवघाट से सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी ठाकुर, भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा से सोहन और पायल जोशी, उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम, आर्यन, लवीस, मुनेश, देवी प्रजापति, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर, सिटी दीवाना, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, टैगोर गार्डन दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, तखतपुर से मिश्रिला विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी, जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका गव्या, सुचा सिंह पाठक, चौरादा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेवगम हमीदून, जिशान अहमद, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, आरती और प्रभा देविता मुरिया, नाथाना पंजाब से हरजिंदा छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, डोंगरगांव से राजपाल राधिका, बेबेनिष्का और तन्मय गजभिये, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद, पीयूष कुमार, अड़ारनाथ घाट से माखन चांदनी, राहुल गोपी वर्मा, मोहाली चंडीगढ़ से डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, कालका से शिवचंद्र बजाज, साहिज और विट्टा बजाज, सुना रहे हैं आपको जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गीत, जतिन के स्वर में, मजरूह की शब्द रचना है, जतिन ललित की धुन।

जतिन की आवाज में ये गीत आपने सुना, जो जीता वही सिकंदर। फिल्म का मजरू की शब्द रचना थी, जतिन ललित की धुन। इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
7: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दाम 103.58 रुपए और डीजल के दाम 96.57 रुपए हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है।
9: मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर

0: कर लोग पैनिक हो रहे हैं, उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस की पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पहले वो लेते रहे हैं उसी तरह से आगे लेते रहे, किसी भी तरह से उनको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है।
1: इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पिछले दो दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। उधर गरियाबंद कलेक्टर ने पेट्रोल डीजल के वितरण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार दो पहिया वाहन में 300 रुपये और चार पहिया वाहन में अधिकतम 1000 रुपये तक पेट्रोल देने की सीमा तय की गई है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड का दौरा कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं केंद्रीय सचिव ने सांकरा गांव में वाटरशेड विकास घटक और मनरेगा के अंतर्गत निर्मित स्टॉप डैम का भी अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने सौगा गांव में 5 एकड़ के वृक्षारोपण स्थल का भी दौरा किया, जहां 1000 से अधिक अमरूद और नींबू के पेड़ लगाए गए हैं। इसी तरह केंद्रीय सचिव ने में नक्शा प्रोजेक्ट की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन समय सीमा में पूरा करने और सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वाकाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय यात्रा में आकाशवाणी भागीदार रहा है और आकाशवाणी ने समय के साथ बदलाव को अपनाया है।
2: आकाशवाणी हेरिटेज संस्थान है भारत के लिए। भारत की राष्ट्रीय यात्रा जो रही है, सांस्कृतिक यात्रा रही, आध्यात्मिक यात्रा रही है, ये सभी में पार्ट रहा है आकाशवाणी। समय के साथ इस बीच में जो बदलाव आए हैं, आकाशवाणी में भी बदलाव आए हैं, डिजिटल रूप से भी उपलब्ध है और सभी चीज़ों में बदलाव को अपनाया है, आत्मसात किया है और आज भी देश की 98% जनता को तक पहुँच है।
1: कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उपनिदेशक रमेश जयभाई और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वाकाथन आज सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। ये शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है।
3: जो वाकाथन एंड माराथन इसलिए आकाशवाणी ऑर्गेनाइज किया है कि 8 जून 2026 को 90 साल पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी इंडिपेंडेंस दिलवाने में भी उनका योगदान था। इसमें हम लोग जितना डाइवर्सिटी ऑफ डायलेक्ट लैंग्वेजेस में प्रसारण करते हैं वो कोई मीडिया दुनिया में नहीं करते हैं। जिसका लिपि नहीं है उस भाषा में भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस्तर रीजन में गोंडी, हल्बी, बटरी का कोई लिपि नहीं है और आकाशवाणी इज ए मदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक प्रदान किए। साथ ही 128

0: शोधार्थियों को पीएचडी, 518 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज कृषि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, किसानों और युवाओं को भी आधुनिक और उन्नत खेती की ओर बढ़ना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से ड्रोन, एआई और डिजिटल तकनीकों को खेती से जोड़कर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु बनने का आह्वान किया। समारोह में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल उपस्थित थे। रायगढ़ जिले के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन ने मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिव्यांशु को फोन कर बधाई दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिव्यांशु भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर स्वास्थ्य विभाग की एकीकृत रोग निगरानी परियोजना रायपुर के अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर रॉय से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 16 मई को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आज से पर्यावरण दिवस अभियान शुरू हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों को पर्यावरण बचाने के लिए दैनिक जीवन में हर संभव प्रयास करने, बदलाव लाने और पर्यावरण के अनुकूल आदतों तथा व्यवहार के महत्व को समझाते हुए शपथ दिलाई। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मई से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आज सुबह मौसम का मिजाज बदलने के कारण राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।
2: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड पर की आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे हर दिल की आवाज आकाशवाणी परिचर्चा, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर के यादगार पल। प्रतिभागी होंगी श्रीमती नम्रता वाजपेयी, श्रीमती मीनू सिंह। संपादन और संचालन श्रीमती संज्ञा टंडन का होगा। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीन की। कार्यक्रम संबंधी और सूचना सुनिए श्रोताओं, फोन करें। गीत सुने कार्यक्रम का प्रसारण महीने के तीसरे सोमवार को होता है। इसका प्रसारण इस माह 18 मई 2026 सोमवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 15 मई सूचना समाप्त हुई।

कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत श्रोताओं, और शामिल कर रहे हैं आप सभी के ईमेल तालुका पंढरपुर से चाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिरशाद, नसीर, चवनपुरा मोरबी से प्रमीला, दीपक, आशु जेटली, रायपुर से विनोद, वीणा, विविधा वंडलकर, जौनपुर से इरशाद अहमद, कामरान इरशाद, अरमान नाविद, अजरा तबसुम, रायपुर से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन आसिया, आफिया परवीन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल पप्पी, सोनू भाटिया, छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा नसरीन अंसारी, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक, बेबी आयुषी श्रीवास, बालोद से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी, अजय देव, तुषार देव, बेबी पूजा तामुरिया, डुमरा बिहार से आसमा परवीन, दुखना रानी, वली भाई अंसारी, करनाल से सुधीर, संदीप गुगलानी, फाजिका पंजाब से भीषण खेरा, विशु खेरा, विशाल खेरा, दिल्ली से राजवली अंसारी, डब्लू अंसारी, राजवली अंसारी, एमएलबी रोड ग्वालियर के श्रोता हैं सुरेश खुराना, पप्पी किरण, लव्या खुराना, बागपत उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और ममता ढींगिया, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विकी, नानू, रविन्द्र रौनक सेन, खतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा, लक्षनपुर से विश्वनाथ, पंकज, तिरुपति साहू, संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम, तुषार, पंशिका, जांजगीर चांपा से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मिरी, पोड़ी भाता अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम निखिल, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन, पीपरपारा पालचू मुंगेरी से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, कुम्भारगली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडुरंग कुम्भार, कोल सिटी बरका खान से अफजल तार, शाहीन सुल्तान, सोनू तसीम, निप्पी, मोहम्मद अफसल मलिक, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, करणवीर हाउस से भूचो कैचिया, परम सिंह, मनजीत, करणवीर, करण, तपियंदर, वरिंदर, सिमरन, एकम, दमन, अभिजोत, बुलढाणा वडशिंगी से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली, श्लोक कुमार, बुलढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना, प्रणय, प्रसिद्धि, हीरामन, संभाजीनगर से अनिल कुमार, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़की, सुना रहे हैं आप सभी को मुकेश और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में मजरूह का लिखा गीत, नौशाद का संगीत।

लगान पंडरिया से रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, जाखोल से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमारी, पूजा खटक, महसूल सीतामढ़ी से अकरम रुबीना, वसीम आरिज, वसीम अकरम, शमीम करम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा, बिहार से याकूब आसमा कुरैशी, यूसुफ सरफुद्दीन आसमा, वसीम आसमा, सलीम आसमा, कलीम आसमा कुरैशी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, रतनगी भट्टापारा से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, मजनू कटेला से कमल बारूजा, मधु सागर बारूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, सोंगा मंगलूर से फनीश कुमार, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन, पार्थ और हेयांश चंदन, कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेन्द्र, साहिल चंद्राकर, पूर्वी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय संध्या और शिवम कोलाम, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, सिंधा कीर्ति कुमार, डिकेश वासु, डॉली पूर्वेश साहू, बलौदा छत्तीसगढ़ से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, जलाला बेस्ट के ये श्रोता हैं, सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना, लक्ष्य लाडो कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल देवांगन, पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, बटिंडा रोड मंडी रवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, लोहगढ़ ठाकुरवाल से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत, राजदीप गुरलाल, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, सरगांव से राजेश हिरुमन, पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, अमरगढ़ चौकी से रिजवान खान, नायशा सबिहा, अनश और रेहान, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, जेबा अजीम, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा, रुद्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, वाशिम महाराज से मेस्टर विश्वर सुरेशे, सुषमा परिधि, सुरेशे मायरा, सुरेशे बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष, मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश, राहुल साहू, लुत्रा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श आतिका, जेल रोड बक्सर से असलम आजाद, मुस्तफा, शमसुल हक, लक्षनपुर से टेकराम विकास, हेमलता, यदु गीतेश्वरी, यदु कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत, आयुष, नंदिनी जंघेल, धमधा सुखरी करा से अमित जंघेल, शकुर जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, चिरमिरी कुरासिया कर से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण, दिनेश और कालिंद्री लहरे। सुना रहे हैं आप सभी को बाजीगर फिल्म का गीत, विनोद राठौड़ के स्वर में रानी मलिक का लिखा हुआ गीत है, अनु मलिक का संगीत।

बाजीगर फिल्म का ये गीत आपने सुना पंकज उधास की आवाज़ में, और अगले गीत के लिए फरमाइशें आप सभी की भिलाई से मुकेश शर्मा, सरिता गौरव गरिमा, नवागढ़ कटी से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो, फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु, पार्वती हिमांशु, तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा सुजाता, चवन पार्क दिल्ली से सोनम सना अदीपा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम वीणा, विनय शंकर नयन पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजे नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मिखाइल, जैनब मुजावर, उत्तर प्रदेश दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, बदलापुर मुंबई से विनोद वर्णलकर, वीणा विविधा वर्णलकर, ग्राम पठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती काजल पूर्वी, हेजल रेशमा, राजेश साहू, कोल्हापुर से विजय चौहान, निंदुरकर तेजस्विनी, अंकिता अनिकेत चौहान, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार, हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, सौरभ दुड़ी, गंडई टिगरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ ऋचा देवांगन, पांडर कौड़ा यवतमाल से महाराष्ट्र से अनिल उषा, धनश्री, सूरज और प्राची, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां, मन्नत जहां, नेहरू चौक पैठा से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, सोनल जाधव, रया रोड राजकोट से राजेश कृष्णा, प्रथम स्वाति और ख्याति, बिहार डुमराव से आसमा अंसारी, आमना अंसारी, वलीउल्ला अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा डब्लू अंसारी, सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र महेंद्र, बेबी जोई यामिनी और उमा तिवारी, बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार, हैप्पी रॉय, चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, अशफाक अफरीन, मेहमद अल्ताफ, नीलोफर कौसर, मोहम्मद इमरान, निशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा।

धमतरी से कोमल सेन, तोशड़ से विनायक सेन, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी, हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान उत्तम जमदाड़े, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित खुशी गोस्वामी, लोहारीडी कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी खुशांत, निशांत साहू, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश महेश, प्रगेश रितेश संघई, अंबागढ़ चौकी से रिजवान, ऐशा सबीहा, अनस और रेहान, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस यशस्वी, निखिल वर्मा, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारोतराव पंचाल, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गौहाड़कर, राही सरिता, प्रणीता सिद्धांत, प्रिंस एकांश, गतौरा से बोधिराम आर्यन, शंकर अमन सूरज, मुन्ना पाठक, कुलदीप प्रधान, विजय पांडे, संतोष यादव, जितेंद्र चंद्रप्रकाश लहरे, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला गौरी सुरलकर, नैला बोरसरा से हेमदे तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, अंजुलता, विष्णु तिवारी, चिरमिरी कुरासिया कर से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ और राम सहोदर, बिलासपुर से छनुलाल श्रीवास, पुष्पा अंजू, योगिता रंजन साहू, हेमंत रामदेव, धर्मदास वाधवानी, हजदा नंबर 2 से कमलेश, जितेंद्र पायल साहू, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाहनकर, निर्मला विशाल, खोंदला उदयपुर से जीवधन सिंह पैकरा, घूर्णी करिश्मा कलेश्वर, सुमार साय, सुख राम पैकरा, हिरमनी पैकरा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु तासु, सत्यमानंद बोहड़ा गाछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, कुट्टी भगत। सुनवा रहे हैं आप सभी को आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में चांदनी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, शिव हरि का संगीतबद्ध किया हुआ।

चांदनी फिल्म का गीत विनोद राठौड़ और आशा भोसले की आवाजों में आपने सुना। इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं, आइए चलते हैं ग्राम सभा में।

कार्यक्रम के सुनैया जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राजू भैया के राम राम। गरजत बरसत बादर झमक ले आगे और चमका के चल दीज। भाई डर घलो लगते ना ये बिन मौसम के पानी गिरते तब है। जहाँ संझा होइच तहाँ भय बने रहते कि पानी फिर गिर ही का सके। ऐसन मा हम सब ला अपन स्वास्थ्य डर ध्यान दे के बहुत जरूरी संगवारी हो। और अगर स्वास्थ्य में ध्यान नहीं देबो तो सर्दी खांसी पकड़ ली बुखार पकड़ ली तो कतको किस्म के परेशानी हमला आ सकते। तेखरे सेती कहे जाते के अपन समय परिस्थिति के अनुसार अपन रहन सहन और जिन भोजन है ओकर व्यवस्था मर किसान भाई मल्ला करना चाहिए। ऊर्जा के जहां तक बात करबो तो हमला शक्ति मिलते हमार भोजन ले। फिर देखा तो आजकल कतको जी हमारे दीदी बहनी भैया मन के बात करबो तो बिन मतलब के भर भर भर भर चूल्हा लबारे रही इंडक्शन लबारे रही बिजली यहाँ बरत रही और गाड़ी है खड़े तबो ले इंजन चलत रही एक बूंद बूंद करके तेल हा बिजली हा खपत होते रहते कतका नुकसान होते। अगर जोड़िया था बहुत कम नुकसान होते ना तो हम सब ला ऊर्जा बचत कढ़ार चेत करना है। और जानकार लोगन चतरो लगन मन तो कथे भाई कि ऊर्जा बचत मतलब पैसा के बचत। भाई बहनी हो ऊर्जा हमला शक्ति देते और हमारे शरीर के प्राण वायु घलो ले हमला हमला ऊर्जा मिलते। और भौतिक जीवन के बात करबो तो कोयला लकड़ी पानी बिजली तेल ए जम्मो ले हमला ऊर्जा मिलते शक्ति मिलते जेला हमन दैनिक जीवन में उपयोग करथन। किसान भाई बहनी हो ऊर्जा बचत पैसा बचत की बात करबो तो निश्चित रूप ले हम सबला छोटे छोटे बाढ़ डर ध्यान दे के जरूरत है अवेला बचाए के जरूरत है। पानी घलो बिन मतलब के नाली ले बहात रहते है ना भाई ऊर्जा के स्रोत है और बूंद बूंद पानी हमार जिंदगानी। ए बात ला ध्यान करके हमला अने पानी ला बचा के चित करना। और तेल के बात कहें भाई तो जिसे आप करब उठियान के बूंद बूंद करके तेल हा जलत रहते और हमारे गाड़ी के इंजन चालू रहते लाइट में पहुंच गिन तब होन भाई तो जिन जगह रुकत हन वो लंग तुरते हमन इंजन बंद करनी तो बूंद बूंद करके कई लीटर हमन इंजन ला जलाथन तेला बचा सकथन। कोयला जेकर हमन बिजली बनाथन पानी घलो मिजार के बिजली बनाथन एकरो उपयोग ला हमला अने कम करना है बचत करना है हन भाई। निश्चित रूप ले हमन कोयला बचत करके समृद्ध बनबो और बचत भविष्य के आधार और बचत करबो लगातार। एक फिर आप लोग बता दी बचत भविष्य के आधार और बचत करबो लगातार ये बात के चेत करके हमन ला ऊर्जा बचत के डहर ध्यान देना है। और आपका गुठियाबो ये संदेशा के बाद

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: भाई बहनी हो, किसानी के बूता में उतरत नवा नवा तकनीक है हमर किसान भाई मन बर, हमर देशवासी मन बर वरदान बन गए। ड्रोन तकनीक के बारे में आप मन जानत हो, लगातार अपन कार्यक्रम के बारे में हमन आपने जानकारी देता थन। ये है बिना ड्राइवर के मशीन जी, ये हमर किसान भाई मन बर कतका कारगर है, कतका उपयोगी है, जिन किसान भाई मन एक उपयोग करते मन जाना थे। दवाई के छिड़क न हो गए, फसल के सुरक्षा हो गए, कि खातू माटी के छिड़का हो गए, एक हर बार बिल्कुल सहूलियत हो जाते और मेहनत कम लगते और समय घलो बांसते ते करते थे हमारे किसान भाई मन लगेबो के ए किसान ड्रोन के जी नई तकनीक है हमारे किसान भाई मन ला अपनाना चाहिए और एक उपयोग के बात करो भाई तो दवा के छिड़काव, हाँ कीटनाशक के छिड़काव, फफूंदनाशक के छिड़काव सरल ढंग हम कर सकथन, कम समय और ज्यादा रकबा के सिंचाई घलो कर सकथन, आने खातू माटी के व्यवस्था घलो कर सकथन, मतलब आने डारे के व्यवस्था ला और कम दवा में हमन ज्यादा अने एकर पल्लो कर सकथन, अपन खेत ला बढ़िया अने दवाई डाल सकथन। और जिन किसान मन अगर सीधा स्प्रेयर में दवाई छींचते तो सीधा संपर्क रथे अने जहर ले तो कीटनाशक घलो ले हमन दूरिया एक हो सकथन। उर्वरक और नैनो यूरिया के छिड़काव घलो में बहुत सहूलियत होते तो ड्रोन हा निश्चित रूप ले हमारे किसान भाई मन बर वरदान बने हैं। फसल के निगरानी करे घलो में ड्रोन कतका उपयोगी किसान भाई हो और हम सबला अने ड्रोन के उपयोग

करना चाहिए। फसल के मां की बात कर बो तो गेहूं हो गए, चना हो गए, सोयाबीन है, कपास हो गए, गन्ना हो गए, सब्जी फसल है, आनी बानी के फसल मां ड्रोन तकनीक अपना के हमारे किसान भाई दवाई पानी के छिड़काव कर सकते हैं। ये ढंग ले जिन उतरे नवा तकनीक है ड्रोन तकनीक, ओहा हमारे फसल के उत्पादन ल कई गुना बढ़ाते और वो एहू घलो में हम बचत कर सकत हन। भाई बचत के बात चल गए तो निश्चित रूप ले हमारे किसान भाई मन के जिन थैली है पाकिट है बचत करके भरत है और भरत है तो निश्चित रूप ले गुनगुनाते घलो जी। तो हमू मन आप मन ल गुनगुनवाबो बढ़िया सुगर गीत ले उषा और केरा बहोरिक और केरा के स्वर में आप मन ल सुना थन ये सुगर गीत सुनाओ।

0: मोर मन मोहनी चल तोला रायपुर घुमा लहू, ये भाव भरे गीत ला सुनावत रही से उषा उर्केरा, भौरी उर्केरा, उनकर संगवारी मन। भाई आपो मन ला घुमाबो हमन खेती डोली खेती का डहर, और हम सब ला सतत निगरानी करे के जरूरत है। और कतको जी प्रयोगवादी किसान मन भाई नवा नवा तकनीक ला अपना के आनी बानी के जिन फल उद्यान है ओला लगा है। आप मन तो लगातार कार्यक्रम के माध्यम ले ड्रैगन फ्रूट के नाम ला सुने हैं संगवारी हो, खास करके कोटा के बात करबो के मोहन भाटा भरारी के बात करबो कोरबा क्षेत्र के कतको जी जागरूक किसान भाई मन ड्रैगन फ्रूट के खेती करके कम लागत मा ज्यादा उत्पादन लेवत हैं। तो आज के फोन इन कार्यक्रम के हमारा उसने बढ़िया विषय है ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन तकनीक। विशेषज्ञ हमारे फोन इन कार्यक्रम मारिश डॉक्टर अमित शुक्ला जी मन जिन मन विषय वस्तु विशेषज्ञ हवे कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर मा, और कार्यक्रम के संचालन करते है हमार वीरू वीरेंद्र भैया मन। तो लेवा वीरू भैया चर्चा ला शुरू कराओ।
1: किसान संगवारी हो जय जोहार, राम राम वीरू भैया के। आओ संगवारी हो सब मजे मजा, बरा सोहारी के स्वाद आओ करी के लड्डू के स्वाद के सुगंध यहाँ तक पहुंचा थे आप मन के जिन बर बिहा में खाया भैया है ना। अब पारी आ गए शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त गोल मटोल बनाए बर। आज कहे के मतलब आप समझ गए हो। आज हम एक सुघर फोनिंग कार्यक्रम में विषय लेके आए हैं ड्रैगन फूड के उत्पादन और तकनीक। ये विषय में सुघर जानकारी दे बर हमारे बीच हमारे स्टूडियो में विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के डॉक्टर अमित शुक्ला जी आ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब के हम पहले स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब राम राम जय जोहार।
2: राम राम वीरू भैया जय जोहार।
1: आओ आपन के स्वागत है।
2: धन्यवाद वीरू भैया।
1: फोन आते सर ले लेते हैं। हाँ हेलो।
3: हाँ भैया मोर माया भरे राम राम।
1: ओ माया और दुलार भरे हमरो तरफ ले राम राम भैया आप मल्ल वर्मा जी।
3: हाँ मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतर छत्तीसगढ़ नारायण प्रसाद वर्मा बोला हम भैया।
1: बिल्कुल आपन के स्वागत है।
3: हाँ डॉक्टर भैया राम राम।
2: राम राम नारायण भैया।
3: हाँ भैया ये ड्रैगन फ्रूट का होते भैया, एक उत्पादन उन्नत तकनीक हमन कैसन ढंग ले कर सकथन, और एक लिए जमीन है और लगाए समय है और एक उचित देखभाल रख रखाव, यही जम्मो बात ले एक संग बता देते भैया फोन लगाए हूँ एक बार।
2: हाँ ठीक है मैं आप मतलब बता देता हूँ। ड्रैगन फ्रूट जैन एक प्रकार का इसे फल के पौधा है जिन्हा उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होते, मतलब गर्म जलवायु के फसल है। एला जैन है उचित जल निकासी वाले जमीन में लगाए जा सके थे, रेतीली जमीन है तो और अच्छा है ना, जैन बलुई दोमट मिट्टी है वो बहुत अच्छा मिट्टी है, उखर भर जल निकासी की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए वो मिट्टी ऐसे हो। और एला 2x2 मीटर की दूरी में लगाए जा सके थे, कतार से कतार 2 मीटर, पौधा से पौधा के 2 मीटर। तो यह कैक्टस कैक्टस फैमिली के पौधा है।
3: अच्छा अच्छा
2: है ना, कैक्टस देखे हो वहाँ आप मन।
3: अच्छा अच्छा
2: हाँ, हाँ तो यह बहुत पानी एला नहीं लगाए, बहुत कम पानी में उचित जल निकासी वाले जमीन में आसानी से एक खेती हो जा करे जा सकते है। एक सबसे अच्छी खासियत है पौधा के है कि एक बार एक बगीचा लगाए के बाद एला 25 साल तक उत्पादन मिलत रहते है।
3: अच्छा भैया। हाँ, हाँ,
2: हाँ, और एक पौधा में 50 से लेकर 100 किलो तक के उत्पादन एक साल में मिलते है, और ये हम 12 महीना फरत रहते फूलत रहते। हाँ, एक तरफ फूल आते एक तरफ फल आते एक तरफ फल पकत रहते ऐसे। तो ऐसे नहीं है कि सीजन में एक ही बार आइस गर्मी में आइस की ठंड में आइस ऐसे वाले नो है, 12 महीने में फलन आत रही। तो एक बार किसान भाई मतलब लगा है और 20-25 साल तक फुर्सत है उखर बाद, बहुत कम मेंटेनेंस वाले है, कीड़ा बीमारी कम आते। सबसे हाँ, अच्छा ये है कि एला लेकिन लगाए बार एला क्योंकि बेल टाइप है चढ़ते थोड़ा, बहुत ज्यादा मोटा एक तना नहीं रहे, मीडियम साइज के रहते तो हाँ, एला सहारा देल पड़ते, तो एक ठन पोल आते सीमेंट के।
3: अच्छा।
2: ओ ओखर सहारा में ओला ऊपर चढ़ाएल पड़ते और एक हाँ, रिंग होते सीमेंट के ही हाँ, गोलवा रिंग आते वो चारों मुड़ा छेद रहते, तो वो जो हाँ, सीमेंट हाँ, के पोल है ओला हम 2x2 मीटर के जिन गड्ढा खोदे दूरी में जिन खोदे हैं गड्ढा वही में पोल लगा देना है।

0: खंभाला,
1: अच्छा भैया,
0: सीमेंट के खंभाला, वो खंभा के ऊपर मां गोलवा चक्रा टाइप उमा चक्री फिट उमा फिट कर देना है ऊपर मां, वो छड़ मां इसे फिट हो जाते और चारों मुड़ा उमा छेद रहते। तो ओखर अब जेन पोल है आप देखे हो, काटा तार बांधे हो अपन खेत मन मां,
1: हाँ भैया, हाँ,
0: जैसे पोल बस वही वही पोल वही पोल वही साइज के पोल वही साइज के जिन खंभा है वही खंभा में चार ठन उमा पौधा लगाना है। कटिंग से एक हर पौधा तैयार हो जाते, एक हर पौधा ला आप मन खरीद सकत हो जहां भी ये पौधा मिलते है ना, शासकीय नर्सरी में मिल जा है कि कृषि विज्ञान केंद्र कृषि महाविद्यालय में मिल जा है, प्राइवेट नर्सरी में भी एक हर पौधा उपलब्ध रहते। तो एक हर तीन किस्म होते, एक होते गुलाबी कलर के ओखर ऊपर स्किन रहते, मतलब ओखर जेन छिलका है गुलाबी कलर के होते, गुदा अंदर होते सफेद कलर के। दूसरा किस्म होते गुलाबी कलर के छिलका और गुलाबी कलर के गुदा, और तीसरा किस्म होते एकर पीला कलर के छिलका और सफेद कलर के गुदा।
1: अच्छा,
0: तो हाँ, तो अपन जरूरत के हिसाब से जेन किस्म आप ला चाहिए वो किस्म लगा सकते हो। बाजार में जेन डिमांड है जेखर ज्यादा बाजार में मांग है वो वाले हर हवे गुलाबी कलर के छिलका और गुलाबी कलर के गुदा वाले ड्रैगन फ्रूट के, बहुत विटामिन प्रोटीन और एमा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत मात्रा में एमा हवे, तो पोषक तत्व से भरपूर ये पौधा है, फल है ना, सलाद के रूप में लोग खाते हैं और ओखर जूस भी बना के पल्प है, खर अच्छा डिमांड है मार्केट में। तो अब एला ओजेन में खूटा गाड़े हो जेला बताओ, खर चार दिशा रहते चार तरफ, तो चारों दिशा में ओलक पौधा लगा देना है और ओखर सहारा देके ऊपर चढ़ाना है खंभा में चिपका के खंभा से। जब पौधा ऊपर चढ़ जाए जब वो रिंग तक पहुंच जाए तहां वो रिंग से ओला इसे नीचे रिंग के पोला जिन छेद है उमा ले घुसा के नीचे इसे लटका देना है ओला, तहां वो नीचे अपन लटक के इसे गोलवा फरत रही वही रिंग में।
1: अब जैसे फल फूल लगत भी है तो वो टाइम हमें कुछ विशेष ध्यान दे लगी का फल फूल?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, टपक सिंचाई पद्धति रखो बढ़िया, लगाए के पहली जैन में गड्ढा बताए हो मैं गड्ढा में बढ़िया सड़े हुए गोबर के खाद डालो वर्मी कंपोस्ट डालो है ना, और कुछ नहीं। जब पौधा बड़े हो जाए पूरा रंग ओमा आ जाए ओला तोड़ के बढ़िया बढ़िया मिठास आ जाए ओमा ओला तोड़ के बाजार में आप बेच सकत हो, बहुत अच्छा कीमत एकर मिलते बाजार में। तो ए प्रकार से आप मन ओखर खेती ला कर सकत हो।
1: अच्छा भैया,
0: बचे जिन जगह रही आपके बगीचा में बीच में ओमा बढ़िया सब्जी वब्जी के एक आध लाइन लगा लो, सीजन के हिसाब से अलग अलग मौसम के हिसाब से, तो आपके पूरा बगीचा के जमीन के भरपूर पूरा उपयोग हो है। फल के खेती के साथ साथ आप मन ला सब्जी के खेती के लाभ भी मिल जाए।
1: कर लिए मैं डॉक्टर भैया के बहुत बहुत आभारी हूँ।
0: आप मन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन फोन लगायो
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण वर्मा जी जय जोहार, राम राम।
1: जय जोहार, राम राम भैया।
2: तू भी किसान बड़ा जागरूक किसान है डॉक्टर साहब, वाकई में अगर छत्तीसगढ़ के किसान कहीं अपन ध्यान देवे जिन बचत जमीन है और खास करके जैसन कि आपने बताया कि ये जमीन कोई भी जमीन में का आसानी से उगाया जा सकते है, खास करके जिन पड़त भूमि है जमा किसान मन कह जाए कोई अच्छा से फसल नहीं ले पाए, तो ये जिन आप मन बताते हो ड्रैगन फ्रूट ये तो बड़ा कारगर हो सकते है।
0: बहुत अच्छा, एकदम आप सही चीज ले पकड़े हो, ऐसे भूमि जेमा हमन ला कुछ नहीं उगा था उमा ड्रैगन फ्रूट ला उगा सकते
2: है। जी फोन आते डॉक्टर साहब ले लेते हैं। हेलो
3: हेलो किसान वाणी।
2: जी जी आपन की स्वागत, मैं वीरू वीरेंद्र भाई कर रहा हूँ, आपन कौन कहाँ बोल रहे भैया?
3: भैया जय जोहार, मैं नगर पंचायत नलहाल नंदन प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ।
2: हाँ बिल्कुल आपके स्वागत है भाई, और आप मन का हम सुरता भी करत रही थन और आज आप मन सुरता करके बड़ा सुघर फोन लगाया भैया। हमारे बीच डॉक्टर अमित शुक्ला जी बैठे हैं।
3: अमित शुक्ला सर है, वो राम राम है।
2: हाँ हाँ
0: राम राम भैया, कैसे हस?
3: बढ़िया बढ़िया है डॉक्टर साहब,
0: का जानना चाहत हो?
3: हाँ ड्रैगन फ्रूट का होते है, कर खेती कैसे करीन?
0: बिल्कुल यदुनंदन जी,
3: विस्तार से जानकारी देवा साहब।
0: हाँ हाँ बिल्कुल यदुनंदन जी, ऐसे जमीन जेन हमार खराब जमीन है जेमा हम कुछ नहीं लेते हैं ओहू में खर उत्पादन हो जाते है ना, न्यूट्रिशन से भरपूर है, एमा बहुत पोषक तत्व है।
3: अच्छा,
0: तो बाजार में डिमांड भी बहुत अच्छा है, कीमत भी बहुत अच्छा मिलते है एकर बाजार में, एकर मारे किसान भाई मल्ला। जलवायु जेन है हमारे छत्तीसगढ़ के एरिया है बहुत अच्छा है, यहाँ आसानी से ओखर खेती करे जा सकते है, और एक बार लगाए के बाद आप 20-25 साल तक कुछ और करे जरूरत नहीं है, बगीचा में फल आते रहे।
3: बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब,
0: बिल्कुल।

0: बिल्कुल
1: और साल भर फल आते थे एमा। हाँ ऐसे नहीं कि सीजन बस माही दो बाई दो मीटर के दूरी में आप मतलब गड्ढा खोदना है दो दो फीट के कतार से कतार पौधा से पौधा के दो मीटर के दूरी रखना है। एक एमा थोड़ा खर्चा है शुरू में थोड़ा खर्चा लगते कि टपक सिंचाई पद्धति की व्यवस्था करो और उठे हुए क्यारी बनाओ। जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूरी है एक हर खेती पर। अगर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं रही जल भराव की स्थिति रही तो पौधा मर जाए। बहुत ज्यादा इला पानी नहीं चाहिए सूखा जगह भी हो जाते तो ये चीज ला ध्यान रखो कि उठे काहे कि बारिश के मौसम में यहाँ बारिश बहुत होते तो ये पौधा है जिन 20-25 साल तक आप मनला रखना है तो हमला एक तो ढलान वाले जमीन चुनाव करना है या फिर हमारे खेत ला वैसा बनवाना है ढलान वाले या फिर और दूसरा हमला का करना है उठे हुए क्यारी बनाना है।
0: हाँ हाँ
1: बढ़िया एक मीटर चौड़ा उठे हुए क्यारी बना दो जेसीबी वगैरह मशीन से आजकल बन जाते पूरा उठे हुए क्यारी बनाए के बाद 2x2 मीटर की दूरी में या गड्ढा खोद करके सीमेंट के जिन पोल आते खंभा आते खर वो खंभा ला गड़ाना है जमीन में 2 फीट अंदर मजबूती से वो खंभा गड़े रहे और ऊपर में इसे उमा निकले रहते का बोलते हैं छड़ है वो छड़ में ही फिट हो के खांचा बने रहते गोलवा रिंग आते सीमेंट के।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ तो ये रिंग और छड़ ये मतलब जिन खंभा है एकरे खर्चा है थोड़ा अब अच्छा, अच्छा। जिसे मान लो आप पकड़ लो 700 से 1000 रुपया के एक पौधा में खर्चा है इला लगाए में खंभा और वो रिंग ला लेकिन एक बार के खर्चा है बस और इला लगाए के बाद फिर वो रिंग में ही और वो जिन खंभा है उखर चारों मुड़ा ही पौधा ला हम लगाना है उखरे तीर वेच में चार पौधा और पौधा ला फिर ऊपर चढ़ाना है रस्सी बांध बांध के वही खंभा के सहारा से चढ़त जाए चिपक के खंभा में और फिर वो रिंग से नीचे इसे लटका देना है होला घना हो जाए वो मेरे और फिर उमा बढ़िया फल है लाल अगर लाल किस्म गुलाबी किस्म आते उखर छिलका गुलाबी वाले और अंदर गुलाबी गुदा वाले उखर ज्यादा डिमांड है बाजार में वैसे एक पीला छिलका वाले भी आते और गुलाबी छिलका और सफेद गुदा वाले भी आते तो अपन जरूरत के हिसाब से किस्म के चुनाव कर लो उखर बाद ओला आप मन उसने जिसे बताया हो रिंग से नीचे निकाल के और उमा हर साल उमा फलन लेते रहो और का जानना चाहत हो बताओ
0: खातू माटी कैसना लगते कि जैविक खेती में हो जाते
1: ना जैविक खेती में बहुत अच्छा होते जैविक खेती में सिर्फ बढ़िया कुछ और खातू नहीं लगा सिर्फ सड़े हुए गोबर के खाद वर्मी कंपोस्ट इतने ही डाल दो काफी केमिकल खाद की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़े मां थोड़ा बहुत अगर डाल भी करी हो थोड़ा बहुत डाल दो हल्का हल्का
0: और कीड़ा मकोड़ा के भी समस्या आती है
1: बहुत कम मिली बग बस आते हैं थोड़ा अच्छा। कीड़ा के कहे कि ये केक्टस है कटीला पौधा है तो ज्यादा एमा कीड़ा के समस्या भी नहीं रहे बीमारी के भी समस्या नहीं रहे तो एमा अगर थोड़ा बहुत कीड़ा बिल्कुल कम खर्चा कोई खर्चे नहीं है एक बार लगाना शुरुआत
0: ज्यादा करके खर्चा कीड़ा मकोड़ा बीमारी नियंत्रण में लग जाते तो मैं नहीं लगाएगा
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मिली बग के आते मान लो समस्या तो नीम के तेल के उपाय है ना या साबुन या डिटर्जेंट पाउडर लग घोल के स्प्रे कर दो तो मिली बग खत्म हो जाते हो खबर सादा पानी स्प्रे कर दो 2 घंटे बाद ना तो मिली बग की समस्या चीटी ला मत बढ़ा दो चीटी के कारण भी मिली बग भी बढ़ते तो पानी की स्प्रे में भाग जाते हो बीच में प्रूनिंग तो कोई भी फल के पौधा आप लगाओ तो प्रूनिंग की जरूरत पड़ी कब पड़ते शुरू में तो बिल्कुल नहीं पड़ा 1.5 साल के अंदर एमा फल आ जाते पौधा लगाए के 1.5 से 2 साल में आप फलन मिले लगी और प्रूनिंग की जरूरत जैसे फल तोड़ाई हो गए अब उखर बाद आप देखो कि मान लो कोई कोई बीमारी आते एंथ्रेक्नोज है कि कोई बीमारी कोई भी टहनी में मान लो वो टहनी ला काट दो उखर बाद का कर रहे हैं कि जैसे औ जैन एती तेती बढ़ा थे जैन टहनी है कि आप मतलब सब्जी वब्जी लगा था बीच में रेंगे में आए जाए में जैन टहनी है दिक्कत करा थे वो टहनी ला आप ला काटना है या जैन टहनी में फल उल नहीं आते जैन है तुम्हारा फल तोड़ाई में या कुछ और खेती के क्रिया करे में जैन दिक्कत करा थे इसने टहनी ला बस काटना है ज्यादा कटाई छटाई भी नहीं है ना तो एक प्रकार से आप कर सकत हो हल्का हल्का जैन मेर की जरूरत के हिसाब से प्रूनिंग कर सकत हो मां
0: डॉक्टर साहब जी से फलदार वृक्ष में बोर्डो पेस्ट वगैरह लगा ला पड़ते तो क्या हम लगा सॉरी
1: एमा लगाए की जरूरत नहीं है
0: अच्छा
1: और लगा भी दे हो मान लो बोर्डो पेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ पतला घोल उमा पानी में घोल के और उमा पोताई कर दो तो ऊपर कीड़ा बीमारी जाए के भी समस्या नहीं रही और नहीं भी करी हो तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत जन किसान नहीं भी करे मैं देखे हूँ
0: जानकारी दिया।

0: बहुत बहुत धन्यवाद है। आकाशवाणी बिलासपुर ला भी धन्यवाद है जो हमारा बेरा बखत में आप जी से डॉक्टर मिलकर मिला थे।
1: तो धन्यवाद वर्मा जी, आपन फोन लगाए खरबर, आगू फिर फोन लगाते रही हो। जय जोहार, राम राम।
0: जय जोहार, राम राम।
1: तो फोन आते डॉक्टर साहब। हेलो हेलो
2: हेलो वीरेंद्र भैया, राम राम।
1: राम राम, जय जोहार भैया। कहाँ बोला था दाऊ, कौन बोला था गा? हाँ, तो अपन के स्वागत है भाई। ले अपन सवाल रखो, हमारे बीच है डॉक्टर अमित शुक्ला जी मन।
2: हाँ शुक्ला भैया, राम राम।
3: राम राम विश्राम यदु भैया।
2: हाँ बैगन फ्रूट लगाना है भैया, तो कौन से मिट्टी में अच्छा पैदावार मिली बताते हो?
3: ड्रैगन फ्रूट आप मन में अगर जैसे कोई बिना उपयोग वाले जमीन भी, मान लो परिया जमीन है, इसे जमीन जमा कुछ नहीं हुए, ओहू में आप लगा सकत हो। और अच्छा जमीन है जिमा आप बगीचा लगाना चाहो, ओहू में लगा सकत हो। तो उचित जल निकासी वाले जमीन है, ये बात के बस ध्यान रखना है अपन ला कि जल भराव की स्थिति मत रहे। बलुई दोमट जमीन, रेतीला जमीन एक बार बहुत उचित माने जाते। उष्ण कटिबंधी पौधा है, गर्मी वाले जलवायु के पौधा है, कैक्टस फैमिली के पौधा है, तो आसानी से कोई भी जमीन में लगाए जा सकते हैं। लेकिन पानी बहुत ज्यादा नहीं भरना है, नहीं तो गल जाए। बिल्कुल भाटा जमीन में बहुत अच्छा बनी, उठे हुए क्यारी बना ले हो, 1 मीटर चौड़ा रहना चाहिए क्यारी, अच्छा उठे हुए क्यारी बनवा लो, है ना। गड्ढा 2 फीट के खोद लो, ओमा 2 फीट के गड्ढा खोद के ओमा पोल गड़ा लो सीमेंट के, और सीमेंट के पोल के सहारा में पौधा लो ऊपर चढ़ाओ।
2: अच्छा
3: है ना, ऊपर रिंग लगे रही सीमेंट के, और रिंग वाले नीचे बुलकाना है वाला।
2: अच्छा, वो खाद उमा,
3: खाद उमा शुरू में 10 किलो सड़े हुए गोबर के खाद डाल लो गड्ढा में।
2: अच्छा,
3: और हर साल थोड़ थोड़ वही जड़ के आसपास में, जड़ ला बिना डैमेज के हुए वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, डीएपी, यूरिया भी अगर डालना है तो 100 ग्राम 50 ग्राम से ज्यादा नहीं डालना है। शुरू में पौधा 1 साल का है तो 50 ग्राम से ज्यादा नहीं डालना है। 2 साल से ऊपर के पौधा है तब भले आप 100 ग्राम डाली हो।
2: और दूरी कितना दूर लगाना है?
3: 2x2 मीटर के दूरी में लगाना है, पौधा से पौधा भी 2 मीटर, कतार से कतार भी 2 मीटर।
2: अच्छा,
3: और उठे हुए क्यारी बनाना है, ध्यान रखियो।
2: अच्छा अच्छा,
3: ताकि उमर से जल जैन है, पौधा पानी है उमर मत रुके, आसानी से निकल जाओ।
2: हाँ अच्छा ठीक है,
1: धन्यवाद, जय जोहर, राम राम।
2: राम राम भाई, राम राम।
1: तो डॉक्टर साहब, किसान मन से गोट बात करवे कर था, वाकई में अपन बताए फल के बारे में
3: जी।
1: तो खाए तो ऐसे लगाते जैम जेली टाइप के।
3: हाँ।
1: छिलका निकाल के देखो तो लेकिन मन गुलूल गुलूल।
3: हाँ।
1: और सियान मन के सुलूल सुलूल कहे जाए।
3: हाँ।
1: इतना बढ़िया, और आज के समय में गर्मी के दिन में बड़ा अच्छा।
3: हाँ, नया फल है।
1: हाँ।
3: और अच्छा लाभ के एक वो बन सकते है साधन किसान भाई मन मर, ज्यादा जगह भी नहीं ले हुआ है, कम लो मेंटेनेंस है।
1: हाँ।
3: और साथ में किसान भाई मन सब्जी भाजी खेती भी कर सकते है, बीच के जिन जगह है उसका उपयोग करके
1: जी, जी,
3: और
1: जी।
3: एक अच्छा इनकम के सोर्स ड्रैगन फ्रूट के खेती से हो सकते है। फल के तो डिमांड मार्केट में ही है, ओखर साथ साथ जितना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिन जूस बनाते हैं, पल्प बनाते हैं, वो मन भी सीधा आपके खेत से उठा के ले जाए
1: थे। और एक बताओ है कि हमारे छत्तीसगढ़ में बेंद्रा की समस्या है।
3: हाँ, बेंद्रा इला ज्यादा डैमेज नहीं कर।
1: हाँ, तो मोर वही कहना रही। हाँ। अब ये कांटेदार है।
3: हाँ।
1: तो बेंद्रा मन शायद फल का ज्यादा नुकसान नहीं कर
3: रहा, नहीं कर रहा अभी, ज्यादा खा के वाला टेस्ट नहीं करे है। लेकिन बेंद्रा मन हो सका थे कर भी सका थे, तो थोड़ा किसान भाई मतलब जरूर इतना ध्यान तो रखेल पड़ी कि भाई अब खेती करना है, खेती से व्यावसायिक रूप से हमला लाभ प्राप्त करना है, तो 4 आदमी हमला बेंद्रा हक आले पर रखे चले पड़ी।
1: मगर जैसे आम है या अमरूद है, अन्य फल जैसे नुकसान पहुंचात हुआ है, इमा काहे उखर बैठे के जगह इसे नहीं मिला,
3: नहीं मिला तो कम नुकसान पहुंचा।
1: तो
3: काहे की जैसे अब जैन खंभा हम गड़ाए हैं तो जमीन से 5 फीट ऊपर है
1: जी,
3: और पोल लगाए के बाद 2 फीट ऊपर, पोल तो 5 फीट में लग गए, लेकिन जिन जिन पौधा है वो ऐसे ऊपर तक।
1: हाँ, बेला
3: एक 2 फीट बेला जेन है ऊपर जाही, फिर नीचे
1: लटकी जी,
3: तो
1: जी।
3: उमर अधर में बेंद्रा मतलब।
1: तो ये प्रकार से कहे जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन पर यहाँ के भुइया जेन है ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत ही सुंदर है। और वातावरण के जहाँ तक बात है तो ये तो हमारे यहाँ के जैसन की यह ऊंचा तापमान में भी हो जाते।
3: बिल्कुल।
1: हेलो
4: हेलो।
1: हाँ भैया, आप मन के स्वागत है। राम राम, जय जोहर भैया।
4: राम राम भैया, भगत राम पटेल बोला था मैं, सिंगारबाड़ी घुटकुले।
1: हाँ भगत भाई, आप मन के स्वागत है। ले अपन बड़ा सुघर सवाल रखो।
4: साहब जी मतलब राम राम जाते हैं।
3: राम राम भगत जी।
4: हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ड्रैगन फ्रूट की खेती जिन है।
3: हाँ, हाँ।
4: तो खेती करे खातिर हमारा कौन कौन बात के ध्यान देना है,

0: कौन टाइप ऊपर खेती करने उसके बारे में जानना चाहते रहे हैं।
1: भगत भाई, पहली तो हमन अच्छा ओला किस्म के चुनाव कर ली, तीन किस्म है ओखर, है ना।
0: अच्छा।
1: गुलाबी
0: हाँ।
1: छिलका, गुलाबी गुदा वाले, गुलाबी छिलका सफेद गुदा वाले, और पीला छिलका सफेद गुदा वाले। तो गुलाबी गुदा, गुलाबी गुलाबी छिलका वाले के ज्यादा डिमांड है, दिखे में अच्छा दिखते हो, वो किस्म के पौधा ले सकत हन, है ना। और ओखर बाद आप मतलब उचित जल निकासी वाली भूमि बहुत जरूरी है, मां बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहे,
0: अच्छा
1: है ना। तो ये ध्यान रखे हो कि जल आराम से निकल सके, पानी बहुत गिरते, बारिश बहुत होते ही है, तो वो मौसम में बिल्कुल पानी रुकना नहीं चाहिए पौधा आसपास, ये बात के ध्यान रखना है। खंभा गड़ाना है पोल के सहारा से, चार ठन पौधा ला पोल से चिपका के ऊपर चढ़ाना है, ऊपर में रिंग रही सीमेंट के, वो रिंग में छेद रही, वो रिंग से आप मतलब नीचे में बुलकाना है और ऊपर ऊपर से इसे नीचे लटकाना है गला एखर तना ला, है ना। और हर साल में बढ़िया खाद पानी, गोबर के खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब ला देना है, ताहे में ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़े नहीं। एक बार लगा दो, 20 से 25 साल तक आपके बगीचा बढ़िया लगे रही, और हर साल 12 महीना है फलत रहते, कभी एक तरफ फूल आते, एक तरफ फल आते, है ना। तो सीजनल नो है, हमेशा साल भर में फलन आत रही।
0: अच्छा अच्छा, मतलब कम लागत में अच्छा ऊपर खेती और उत्पादन करे जा सकता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लाभप्रद खेती है, विटामिन अच्छा है मां, है ना, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत अकत है, तो खाए में पोषण अच्छा मिली, बच्चा मन या बड़े मन जेन भी खा है, और बाजार में डिमांड है, किसान भाई मन लाभ मिली।
0: सुंदर जानकारी दे, कर लिए आप लोग डॉक्टर साहब के साथ में किसान वाड़ी प्रभाग ले, गाड़ा गाड़ा बधाई,
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपो मल्ला भाई फोन लगाए खरवन के, जिन समस्या रही से जिज्ञासा रही से वो जिज्ञासा आज बढ़िया शांत करे हो, आज सुघर विषय किसान मन पर लाभकारी, गुणकारी, फायदेमंद और आमदनी दो गुना करे के बड़ा सुगम रास्ता आप बताए हो कि ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन और तकनीक विषय में। आपन समय निकाल के हमारा आकाशवाणी के स्टूडियो में आया, किसान मन पर समय दियो, एकर बार आकाशवाणी परिवार आपन ला बहुत बहुत धन्यवाद देते, और डॉक्टर साहब अब कार्यक्रम ले विदा लेह के घलो बे रहो गए, तो आप मन ला कहबो जय जोहार, राम राम, धन्यवाद।
1: जय जोहार, राम राम वीरू भैया, आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो किसान संगवारी हो, ए तरी से फोन आधारित कार्यक्रम, फोनिंग कार्यक्रम जेमा आज विषय रही सवे ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन तकनीक, के विषय में सुघर आज जानकारी दीहीन हमला डॉक्टर अमित शुक्ला जी इमर रही है, विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के, और मैं वीरू वीरेंद्र भाई आप तक आप मन के फोन आई चुका लेहन, और जिन भी समस्या रही सब निदान करे के प्रयास करें, और अब कार्यक्रम ले विदा लेह के बेरा हो गए, तो उतके कहबो और आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दीहीन है सौरभ केसरवानी जी में, अब जय जवान जय किसान वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम।
3: वाह भाई, कतका सुघर लागिस ना फोरिन कार्यक्रम, हा ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन तकनीक, विशेषज्ञ से डॉक्टर अमित शुक्ला जे मन विषय वस्तु विशेषज्ञ है कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर मा, और कार्यक्रम के संचालन करत रिसे हमर वीरू वीरेंद्र भाई। संगवारी हो, आप मन ला दे दिन हमन मौसम और मंडी के जानकारी, मौसम के जानकारी ऐसा है मिले जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, हल्का पानी गिर सकत है, बादल छाए रहे। तिफरा सब्जी मंडी मा पताल के भाव 2700 रुपया, आलू 1600 रुपया, रमकेरिया 900 रुपया, लौकी 800 रुपया, पत्ता गोभी के भाव 1000 रुपया, करेला के भाव 2000 रुपया, कलिंदर के भाव 1800 रुपया, चुकंदर के भाव 3200 रुपया, हरियर मिर्चा 4500 रुपया, निमाऊ 4000 रुपये क्विंटल, और भाटा 700 रुपया, गोंदली 1200 रुपया, फूल गोभी 1000 रुपया क्विंटल। सामिक सलाम, हम किसान भाई मल्ले कहना चाहतन कि जिसे लगातार पानी गिरा थे और घाम घलो कर थे तो बढ़िया बतर बना थे संगवारी, तो आप मन करस जुताई जे लगनी समकालीन जुताई कथन ये लकर ले आप, और जिन जगह में कहो ज्यादा पानी गिर गए वहां फसल है तो पानी निकासी घलो के व्यवस्था हमारे किसान भाई मल्ला करना चाहिए। मूंग उड़द में आप मन यूरिया के टॉप ड्रेसिंग यानी छिड़काव कर सका था, सब्जी फसल में निंदाई गुड़ाई के व्यवस्था हमारे किसान भाई मल्ला करना चाहिए, फलदार पौधा ला आधार देना चाहिए, मछली तालाब के साफ सफाई पर हमारे किसान भाई मल्ला ध्यान देना चाहिए। यही मौका है हमारे किसान भाई मन अपन छोटे मेड़ ला बड़े मोटा मेड़ बन कर तक बना सकते हैं, जिमा उमन कोदो है, राहे है, तीले बो सकत, सब्जी खलो लगा सकते हैं, ये ढंग ले हमारे किसान भाई मन सामिक सलाम आन के अगर अपन किसानी के बूता ला कर ही तो अच्छा हो ही। जात जात आप मतलब बढ़िया ठीक।

किन्नर आबे रे मोर भावरा कछु के बहाना मा किन्नर आबे कतकस घर भाव भरे गीत ला हमला सुनात्री से बिंदा यादव और शिव कुमार मरावी और एक संग आज के ग्राम सभा कार्यक्रम ले घर जाए की बेरा हो गए। ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राजू भैया के जय जोहार राम राम।

ग्राम सभा आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। सुनते हैं हर दिल की आवाज आकाशवाणी परिचर्चा, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर के यादगार पल। प्रतिभागी हैं श्रीमती नम्रता बाजपेयी, श्रीमती मीनू सिंह, संपादन संचालन श्रीमती संज्ञा टंडन का और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। ये शब्द एक घोषणा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक एहसास है। आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली सफर का उत्सव मना रहे हैं, तो ये केवल एक प्रसारण संस्था की वर्षगांठ नहीं है बल्कि भारत के आधुनिक इतिहास, संस्कृति और उसकी धड़कन की कहानी है। 1936 में जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, तब से लेकर आज तक इस आवाज ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। आजादी की घोषणा हो या 1971 की जीत का समाचार, आकाशवाणी हमेशा देश की पहली गवाह रही है। आज आकाशवाणी बिलासपुर से मैं संज्ञा आप लोगों के बीच हूं, और आज से नहीं 1991 से, जब से आकाशवाणी बिलासपुर की स्थापना हुई है, तब से अगस्त के महीने से मैं आप लोगों के साथ आकस्मिक उद्घोषक के रूप में लगातार हूं। और आज अपने साथ दो आवाजें और लेकर आई हूं। उनमें से एक है नम्रता वाजपेयी, जो 1992 से आकस्मिक उद्घोषक के रूप में आप लोगों के साथ एक लंबे समय तक रही हैं, और तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में उनकी छत्तीसगढ़ी को, उनके बात करने के तरीके को आप लोग क्या कभी भुला पाएंगे? तो नम्रता जी, आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
2: मेरे सभी श्रोताओं को ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: और हमारे साथ आज दूसरी आवाज, वो भी आप लोगों की बहुत जानी पहचानी आवाज है। भले ही आप अभी कुछ वर्षों से उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपने उनकी आवाज को बच्चों में भी सुना है, महिला सभा में भी सुना है, युवा जगत में भी सुना है और आकस्मिक उद्घोषक के रूप में भी सुना है। सन 2000 से 2018 तक आकाशवाणी बिलासपुर में लगातार इनकी आवाज आती थी। सोचिए इस दौरान आपके बीच ऐसी कौन सी आवाज थी? ये है हमारे बीच मीनू सिंह। स्वागत है मीनू आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद संज्ञा जी, और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: बचपन की वो दोपहर याद कीजिए जब रेडियो का नॉब घुमाते ही फिल्मी नगमे घर के आंगन में गूंजने लगते थे। हवा महल की कहानियां हो या फिर बिना का गीतमाला या आकाशवाणी के और भी इतने सारे कार्यक्रम, इतने सारे नाम हमें मनोरंजन के साथ साथ तहजीब और संस्कार भी देते रहे। नम्रता जी बताइए, तहजीब और संस्कार का रेडियो के साथ क्या संबंध मानती हैं?
2: मैं तो ये कहूंगी संज्ञा के जैसे मिट्टी के साथ पानी का। कहना चाहिए कि जब पानी मिट्टी में पड़ता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। संस्कार भी इसी तरह के होते हैं, और रेडियो से तो इनका बहुत गहरा संबंध है। मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने उस सुनहरे दौर को जिया है जब हमारे समय में टीवी नहीं था, हम रेडियो से ही चिपके रहते थे। मुझे आज भी याद है, सन 72-75 की बात है। वो दौर ऐसा था कि घर में एक ट्रांजिस्टर था, एक बड़ा रेडियो था, तो बड़ा रेडियो माँ के कब्जे में रहता था और छोटा ट्रांजिस्टर पिता के।
1: अच्छा।
2: पिता बीबीसी लंदन ज्यादा सुनना पसंद करते थे, और जब क्रिकेट चलता था तो उनके हाथ में रेडियो रहता था। ऐसा लगता था कि कब हम वो रेडियो, वो ट्रांजिस्टर अपने पास रख लें और हम अपने पसंदीदा गाने सुने। और एक बात तो और है कि सबसे बड़ी बात तो कि जो सोचने की और गुदने की शक्ति है ना, वो हमें रेडियो से प्राप्त होती है। अब ऐसा कहेंगे कि वो कैसे, तो पुराने दौर के जो गायक कलाकार थे, उनके नाम, उन फिल्मों के नाम, उनके सन, जब उद्घोषक हमें बताते थे तो वो हमें याद हो जाते थे। अगली दफा जब हम सुनते थे वो गाना तो हम फट से बता देते थे कि ये गा रहे हैं और ये इस फिल्म का गीत है।
1: बिल्कुल।
2: और रही संस्कार की बात, तो मैंने देखा है कि बहुत नपे तुले शब्दों में,

0: बहुत शालीन शब्दों में। ऐसा नहीं है कि रेडियो पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हर भाषा को सुनेंगे जिस हिसाब से सुनेंगे तो उस बात को कभी कभी ये जी करता है कि हम भी उसी स्टाइल में उन्हीं की तरह उतना ही मीठा बोलने की कोशिश करें,
1: कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें।
0: हाँ, और जहां तक समय की पाबंदी है तो ये तो बात ही नहीं है। रेडियो जब न्यूज शुरू होती थी, देखो न्यूज का समय हो रहा है, फटाफट खाना खा लो, अब सोने का समय हो रहा है, ये कार्यक्रम है, बिना का गीत माला आने वाला है, 8 बजे का समय है, इससे पहले अपना होमवर्क कर लो। सारा काम रेडियो के हिसाब से चलता था। रेडियो
1: एक बात और है नम्रता जी, समय की पाबंदी और अनुशासन, ये जो संस्कार हैं जो रेडियो ने हम लोगों को भी सिखाए और हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों तक, हमारे परिवार बच्चों तक भी पहुंचे, इसको नहीं कहना चाहेंगी आप?
0: नहीं, ये तो बिल्कुल सही है संज्ञा। आज भी अगर कोई वक्त पे पहुंच जाता है, सबसे तो बोलता बड़ा रेडियो टाइम हो, और किसी का उदाहरण नहीं देता कोई।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है कि घड़ी से मिलाए हो या ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, आज भी लोग बोलते हैं बड़े रेडियो टाइम हो। तो उसका कह है कि वो अब तो ये कहूंगी कि हमें तो वो आदत बन गई।
1: बिल्कुल, आज भी किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है और 6 बजे का समय दिया जाता है तो हम 6:05 पे पहुंच जाते हैं और हमें मालूम होता है लोग 7 बजे तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे पेट में कुछ कुछ खलबली मचने लगती है क्योंकि हम उस तहजीब और संस्कार से पले बढ़े हैं जिसको रेडियो कहा जाता है।
0: वो अब हमारे आदत में और हमारे स्वभाव में पड़ गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इस तहजीब और संस्कार की बात तो है मीनू, और लोगों में क्या परिवर्तन आया होगा, 90 साल का हो चुका है रेडियो का सफर, और उसको सुनने वाले जो हमारे हजारों लाखों श्रोता साथी हैं, उन लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या राय है इस बारे में?
2: देखिए, रेडियो ने बहुत ज्यादा परिवर्तन, अगर मैं भारतीय जनमानस की बात करूं तो बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया है। सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि जागरूकता फैलाई। अगर हम देखेंगे तो 1942 में उषा मेहता ने एक रेडियो के जरिए जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको बढ़ाने का काम किया। तो आप सोचिए, देखिए उस समय लोगों के बीच में जागरूकता कि नहीं, ये हमारा देश है और ये हमारी आजादी की लड़ाई है, उस वक्त से रेडियो प्रभावी है। आजादी के बाद हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे खाद्यान्न की समस्या है और एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत कम थी, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, बाल विवाह बहुत होता था, उसके लिए एक अभियान चलाना था, लेकिन उसको रेडियो के जरिए, विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए, टॉक्स के जरिए लोगों तक पहुंचाना कि नहीं, बच्चों का विवाह जरूरी नहीं है, उसके लिए एक समय है, उस समय विवाह करना चाहिए, तब लड़की का स्वास्थ्य सही रहेगा, पढ़ेगी लिखेगी तो अपने परिवार को चलाने लायक बनेगी, ये समझाना। हरित क्रांति की बात करें तो अगर हम देखते हैं तो कृषि के जो कार्यक्रम है, खेती की बात है या ग्राम सभा है, किसान वाणी जिसमें एक महत्वपूर्ण भाग रहा है आकाशवाणी बिलासपुर उसका, तो उसके जरिए जितनी जागरूकता हुई है उसने किसानों की जिंदगी भी बहुत आगे बढ़ाई है। देखिए, पहले खाली किसान खेती करते थे, उनको ये समझाया गया कि नहीं, आप सिर्फ खेती नहीं करिए, साथ में पशुपालन कीजिए, पशुपालन में क्या करना है, कैसे आपको इसके लिए सब्सिडी कहाँ मिलती है, कहाँ से आप लोन ले सकते हैं, आप किस तरह से पालन करेंगे, किस वक्त कौन सी दवाई चाहिए, किस तरह का इलाज चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ आते हैं। तो ये हरित क्रांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
0: बिल्कुल,
2: एजुकेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और रही बात लोगों के जीवन में, तो देखिए सबसे बड़ी बात है हमारी भाषा। हमारी भाषा कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी जगह पे जाकर बदल जाती है, लेकिन जो हिंदी का संस्कार है, बहुत सारे भाषाओं के शब्द मिलकर हिंदी बनी है, और वो हिंदी जब हम रेडियो पे सुनते हैं तो हमें वो अपनी से लगती है, क्यों, उसमें बहुत मिठास है, उसमें सारे शब्दों का समन्वय है और हम आदर के साथ बात करते हैं। हम एक छोटे से बच्चे से भी जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसे सम्मान के साथ, आइए आपने क्या किया, ये कहते हैं। और ये ही संस्कार जब समाज में लोग सुनते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जितने रेडियो के श्रोता हैं, कभी आप उनको बोलते देखिएगा तो आपको लगेगा ये तो एकदम अनाउंसर्स की तरह बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो स्वस्थ मनोरंजन के अलावा हमारे जीवन पे, हमारे पूरे समाज में प्रभावी हुई है रेडियो के जरिए।
1: बिल्कुल सही कहा, शिक्षा और सूचना का सशक्त माध्यम रहा है रेडियो। खेतों की मेड़ पर बैठे किसान के लिए कृषि दर्शन हो या सुदूर गांव में रहने वाले छात्र के लिए शैक्षिक प्रोग्राम, आकाशवाणी ने सूचना के लोकतंत्रीकरण में जो भूमिका निभाई है वो अतुलनीय है। ये केवल सूचना नहीं देता बल्कि जीवन गढ़ता है। छत्तीसगढ़ी के प्रोग्रामों के साथ लगातार जुड़ी रही नम्रता जी, आप श्रोताओं से लगातार बात करती रही ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, तो क्या लगता है आपको बिलासपुर

0: और आकाशवाणी ने पिछले इतने सालों में छत्तीसगढ़ी के लिए, लोकल लैंग्वेज के लिए कितना कुछ किया।
1: ये तो सही बात है संज्ञा। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं घर में यानी छत्तीसगढ़ी भाषा हम नहीं बोलते बचपन से, लेकिन उसके बाद भी यहाँ सबके बीच मैं पली बढ़ी हूँ, तो एक भाषा की जो मिठास होती है हर क्षेत्रीय भाषा की, ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ी, हर क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम हमारे रेडियो में आते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं। तो मुझे याद है काफी पहले एक कार्यक्रम, पहले यहाँ के उद्घोषक ही देते थे जो छत्तीसगढ़ी में बोलते थे, हम लोग तो केवल हिंदी के ही कार्यक्रम देते थे, तो एक कार्यक्रम था थोरकुन गोठ थोरकुन गीत, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ी जो हमारे कलाकार हैं वो ही आके देते थे। एक समय ऐसा फंसा कि वो नहीं आ पाए, तो यहाँ मुझसे कहा गया नहीं ये कार्यक्रम आप ही करिएगा। अच्छा, तो ऐसी ऐसी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो हमारे शायद श्रोता नहीं समझ पाते, तो मुझे बहुत डर लगा। मैं बोली मैं क्या करूंगी क्या बोलूंगी, तो बोले आप गाने तो समझती हैं छत्तीसगढ़ी बजाती हैं,

0: तो यहाँ मुझसे कहा गया नहीं ये कार्यक्रम आप ही करिएगा। अच्छा। तो ऐसी ऐसी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो हमारे श्रोता नहीं समझ पाते, तो मुझे बहुत डर लगा। मैं क्या करूंगी, क्या बोलूंगी। तो बोले आप गाने तो समझती हैं, छत्तीसगढ़ी बजाती हैं, लोक संगीत बजाती हैं, वो सब तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो बोले छोटी सी बात है, बस थोड़ी थोड़ी बात करिए उनसे और एक गाना बजा दीजिए। तो मैंने ऐसी ही खेती किसानी से जुड़ी बातें, मौसम की बातें, ऐसे सब की अपने श्रोताओं से और गाने बजा दिए। अब उस कार्यक्रम की बड़ी तारीफ आई तो मैं अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करी कि मैंने कहा देखो मैंने छत्तीसगढ़ी में भी एक कार्यक्रम किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चार लोगों के बीच ये बातें करी, मैंने अपने सब अपनों को बताया कि आज मैंने छत्तीसगढ़ी में रेडियो में बोला है और सब मेरे श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। उसके बाद फिर एक प्रोग्राम आया तुहर गोठ हमर गीत, ये फोन इन कार्यक्रम। तो उस कार्यक्रम को करने में तो सच में संज्ञा मुझे इतना मजा आता था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं केवल आनंद ले रही हूँ अपने श्रोताओं से बात करना। तो बातचीत बहुत सामान्य, जो किसी अपने से फोन में बात करते हैं ना, तो कोई दार्शनिक ऐसी वैसी बातें नहीं करते, केवल अपनी अपनी बातें करते हैं कि आप कैसे हो, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, बस। तो वो बातें, और एक बात है कि कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसे श्रोता बहुत पसंद करते हैं। एक दो श्रोता मुझे मैडम मैडम बोलते थे कि मैडम ऐसे मैडम वैसे। तो मैंने कहा कि भैया मुला मैडम छान बोलाओ, मुला दीदी बोलाओ। तो वो बाद में मुझे इमेजिन हुआ कि मेरे सब श्रोता मुझे दीदी के नाम से जाने लगे। तो मैं कहती हूँ कि एक गौरवपूर्ण क्षण भी होता है और रेडियो तो मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं।
1: वाह। तो नम्रता जी के लिए तो चमत्कार से कम नहीं, और मीनू आपके लिए, आप तो आओ बच्चों, महिला सभा, युवा जगत, आकस्मिक उद्घोषक के रूप में आपने इतना लंबा सफर हर वर्ग के श्रोताओं के साथ लगातार जुड़ी रही, तो आप भी अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किए हैं। जैसे युवा जगत में थी तो एक कार्यक्रम एक साल तक मैंने उसे प्रेजेंट किया, वो सवालों के दायरे में
1: क्विज टाइप
2: प्रोग्राम था, वो काफी पॉपुलर हुआ। बाद में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी आने लग गए थे। और जहां तक महिला सभा की बात करें तो उसमें तो बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने ऐसे किए हैं जो मेरे लिए भी यादगार है, बहुत ज्यादा मुझे बहुत सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात है मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ लिख लूंगी, लेकिन महिला सभा में आए तो उस समय कहा गया कि नहीं नहीं आपको झलकी लिखनी है, आप लोग लिखिए। तो मैंने दो झलकियां लिखी उसमें महिला सभा में। उसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम, एक रंजनी कार्यक्रम होता था, उसमें किसी एक विषय पे हम लोग बहुत सारा रिसर्च करके लाते थे और उस विषय के ऊपर कहते थे, तो वो कार्यक्रम हम लोगों ने किया। और अनाउंसमेंट के लिए भी जैसे आए हैं तो उसमें अमृतधारा कार्यक्रम प्रेजेंट किया है मैंने। और एक और कार्यक्रम बड़ा अच्छा था संज्ञा जी, अगर आपको याद हो, एक सीरियल चलता था लाडो,
1: कुछ कहती है लाडो।
2: हाँ जी, तो उस लाडो में चाची जी का रोल करके भी मुझे एक वॉइस मॉड्यूलेशन सीखने को मिला कि हाँ इस तरह की बातें व्यक्ति कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और ये चीज मुझे आकाशवाणी में ही मिली।
1: जी बिल्कुल।
2: और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है जिसने लोगों को बहुत प्रभावित किया कि महिला आईटीआई में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमको पता चला हो रहा है, तो हम लोग वहाँ रिकॉर्डिंग करने गए और हम लोगों ने देखा बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, ज्वेलरी मेकिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, फूड प्रोसेसिंग है और जूट का है, और फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी था कोपा करके, वो चल रहे थे और वहां से उन लोगों को प्लेसमेंट हो रहे थे। तो वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करके लाए, यहाँ से प्रसारित किया हम लोगों ने, और उसके बाद बहुत सारी दूर दराज के लड़कियां, हमें पता चला कि वो वहां पर आकर ज्वाइन करी, और बहुत सारे लोगों ने जैसे टेलरिंग को अपना व्यवसाय बनाया, कुछ लोगों ने बुटीक जैसे भी डाले, और फूड प्रोसेसिंग में तो बहुत सारे चीजें सिखाई गई थी, बेकिंग वगैरह भी सिखाई गई थी, तो छोटी छोटी जगहों पर उन्होंने काम शुरू किया। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ मिली। और स्पेशल प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं तो उसके लिए मेहनत कैसे की जाती है, पढ़ाई कैसे की जाती है, तो वो सारी चीजें लाइब्रेरी से यहाँ मुझे बुक्स मिलती थी,
1: शोर करना पड़ता था एक कार्यक्रम के लिए।
2: हाँ, वो करके जब प्रोग्राम हमने प्रेजेंट किया तो मुझे सच कहूँ तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के बारे में जो जानकारी यहाँ पर रहते हुए कार्यक्रमों के जरिए मिली, मैं इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ, वो एक अलग तरीके से पढ़ाई थी। और ये जो पढ़ाई थी कि हाँ इसको चीजों को कई तरीके से प्रेजेंट करना है कि लोग उसे स्वीकार करें और उसकी महत्ता समझें, वो मुझे यहाँ पर

0: मिला, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे यहाँ पर।
1: श्रोताओं की चिट्ठियों की कुछ याद करेंगी नम्रता जी आप?
2: सही बात है, कई ऐसे कार्यक्रम भी किए हैं, लेकिन जब श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम की ढेर सारी चिट्ठियां, अब तो समय कहना चाहिए तकनीकी बदल गई है, अब व्हाट्सएप पे और उस पे
1: डिजिटल मीडिया पे,
2: पर उस समय ढेर चिट्ठियां आती थी और अलमारी पूरी भरी रहती थी, और अलमारी खोलते थे तो भड़बड़ भड़बड़ चिट्ठियां गिर भी जाती थी कभी कभी
1: जी हां, इतने
2: हम लोग बटोर के वापस आने, और इतना अच्छा लगता था अगर श्रोता जब किसी कार्यक्रम की तारीफ करते। तो एक बात बताऊं, जैसे मीनू ने कहा कि एक स्वस्थ मनोरंजन, मैं इस बात को मानती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि विकास जरूरी है। आजकल फोन आ गए हैं, उसमें बहुत सारी बातें हमें ज्ञान पता लग जाता है, लेकिन आज भी मैं सोचती हूँ और समझती हूँ तो जो कहते हैं ना, बचपन में सिखाया जाता है, सही बोलोगे तो सही लिखोगे, आप गलत बोलोगे तो गलत लिखोगे। तो हम बोलने का जो भी काम है हम रेडियो के माध्यम से ही सुनते हैं, और एक वो स्वस्थ मनोरंजन हमारे सामने आता है। जो भी ज्ञान की बातें हैं वो सब हम वहीं से सुनते थे। तो चिट्ठियों के माध्यम से जब कोई इस बात को गुनता था और वापस चिट्ठियों के माध्यम से वो हम तक पहुंचा देते थे तो बड़ी प्रसन्नता होती थी।
1: मीनो, इतने सारे साधन है, सूचना शिक्षा मनोरंजन से जुड़े हुए आज की तारीख में डिजिटल मीडिया है, लेकिन रेडियो का स्थान आज भी एक अपनी जगह है। रेडियो पे जब सुनते हैं श्रव्य माध्यम पे तो किसी भी चीज की कल्पना करते हैं, उस चीज को इमेजिन करते हैं, और दृश्य मीडिया जितने भी होते हैं उसमें हमको सामने वो चीज दिखाई देती है। तो लोगों को श्रव्य मीडिया और दृश्य मीडिया में क्या अंतर समझना चाहिए?
0: देखिए, रेडियो से जो भी हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसको अपने हिसाब से चित्रित करता है, क्योंकि हमको कोई चित्र नजर नहीं आ रहा है। जैसे एक उदाहरण की एक पेड़ पे चिड़िया बैठी है, वो मीठी बोली सुना रही है। अब हो सकता है आपके दिमाग में बुलबुल आ रही हो, मेरे दिमाग में गौरैया आ रही हो, और नम्रता जी कुछ और सुन रही हो, तो ये कल्पना होती है। और इसे एक बहुत अच्छा एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरे अपने जीवन से गुजरा हुआ है। कोरोना के टाइम में मेरे पापा काफी एजेड थे, तो 88 की एज रही होगी, और उनको बस सेफ कर दिया गया था कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, और डर के कारण तो वो लगातार टीवी देखते रहे, और बीच में अचानक उनकी काफी तबीयत जब खराब हो गई तो बातचीत करना बंद कर दिए। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनसे बात करिए, इनका बोलना जरूरी है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये खाली टीवी देख रहे हैं। तो मैंने फट से टीवी बंद की और मैंने उनको रेडियो सुनाना शुरू किया। वो गानों के बहुत शौकीन और उनकी मेमोरी बहुत शानदार थी। वो हम लोगों से ऐसे गाने की ट्यून बजती थी, बोलते थे पिक्चर का नाम बताओ, तो वही जो बचपन में वो हम लोगों से कहते थे वो मैंने उनसे पूछना शुरू किया, पापा ये कौन सा गाना है? तो थोड़ी देर रुक कर वो बात करने लगे, अच्छा ये इस पिक्चर का है, अच्छा बताइए ये कौन गा रहा है। तो फिर प्रोग्राम सुनाने शुरू किए, तो सुनते सुनते सुनते सुनते कुछ दिनों में उनका ब्रेन वर्क करने लगा।
1: वाह,
0: क्योंकि दृश्य माध्यम में आपके दिमाग को कुछ नहीं लगना, क्योंकि वो जो दिखा रहा है वो देख रहे हो और आप उसको मान रहे हो, आप अपना दिमाग नहीं चला रहे हो, लेकिन वो धीरे धीरे धीरे धीरे वर्किंग कम हो जाती है और लोगों पे इसका असर कुछ नेगेटिव जाता है। तो रेडियो जब वो सुनते हैं तो वो चीजों को याद करते हैं और दिमाग चलता है और इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
1: बहुत ही अच्छा संस्मरण सुनाया मीनू आपने, और अब मैं कुछ सवाल छोटे छोटे से एक एक लाइन के आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग बारी बारी से उसका जवाब दीजिए। नम्रता जी, लाइव स्टूडियो या रिकॉर्डिंग रूम क्या पसंद था?
2: बहुत कठिन प्रश्न है मेरे लिए, क्योंकि दोनों
1: बिल्कुल बिल्कुल एक शब्द में एक लाइन में जवाब देना
2: जी। तो मैं कहूंगी रिकॉर्डिंग।
1: पहली सैलरी जब मिली थी रेडियो के थ्रू मीनू, तो कैसा लगा था?
0: क्या बात है, मुझे लगा था दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आज मेरे हाथ में, और वो मुझे रायपुर से मिली थी, आकाशवाणी रायपुर में, आज मेरी बारी ऐसे।
1: अच्छा,
0: 50 रुपए मिले थे।
1: जब नम्रता जी आपने पहली बार आकाशवाणी में कहा, माइक के सामने बैठकर, ये आकाशवाणी बिलासपुर है, तो वो पल याद है क्या, कैसा लगा था?
2: बिल्कुल संज्ञा, क्या है, कभी कभी बीबी सिकंदर मेरे पापा सुनते थे, तो उसमें जब हिंदी के प्रोग्राम आता था तो उसमें सबसे पहला उन लोग बोलते थे उनकी स्टाइल, यानी कहना चाहिए कि स्टाइल क्या होती थी, वो मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि वहाँ शुरुआत होती थी जब हिंदी प्रोग्राम की, तो बोलते थे ये BBC लंदन है, अगला कार्यक्रम हिंदी में चलते चलाते। अब मेरे दिमाग में ये बैठता था कि जब रेडियो पर बैठना है, कुछ बोलना है, तो अपनी आवाज को बहुत मीठी बहुत मीठी बहुत मीठी करके बोलना है। तो पहली बार जब मेरे तो मेरे दिल की धड़कने ना कान में सुनाई दे रही थी मुझे, और सबसे ज्यादा ये बोलना था कि FM बैंड 103.2 MHz पर, तो दशमलव को बहुत सही बोल

0: बोलना है, स नहीं बोलना है, श है, स है, तो बहुत सारी चीजें मैं एकदम तैयारी के साथ आई थी, तो वो पल मुझे आज भी याद है। और धीरे धीरे व्यक्तित्व में निखार आता गया, उसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं बोलना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, रेडियो ने इसे सरल बना दिया है।
1: मीनू, इनके लिए तो बहुत सारा सरल हो गया, नम्रता जी के लिए। ऐसा कोई शब्द जिसको बोलने के लिए सबसे ज्यादा बार रिटेक करने पड़े हो?
2: बिल्कुल है, उसके लिए डांट भी पड़ी थी एक बार मेरे को, सहस्त्र बोल दिया था जबकि सहस्र होता है।
1: अच्छा मतलब गलत बोला था, रिटेक करने की जरूरत नहीं पड़ी।
2: सुधारा ना बाद में।
1: जी जी। सबसे पसंदीदा शो कौन सा रहा जो खुद होस्ट किया हो? नम्रता जी ने तो अपना बता दिया, तू हर गोठ हमर गीत।
0: बिल्कुल,
1: महिला सभा
2: का कार्यक्रम रजनी बहुत पसंद था। उसमें इसी विषय पर बहुत शोध करना पड़ता था, उसके हिसाब से गाने भी लिखने पड़ते थे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती थी। तो इसका एक किस्सा भी है, हम लोगों ने 7 नंबर पे कार्यक्रम किया था, 7 आसमान, 7 समंदर, 7 रंग, 7 सुर, और ये करते करते करते सब हो गया। फिर उसके बाद मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ और हम बाहर आए तो मैंने कहा आपका एक कॉल आया है। मैं गई, कॉल लिया, तो वहां से हमारे पुराने वो कॉल पे थे, बोले हमारी जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकी हुई थी, हम आपका कार्यक्रम सुन रहे थे।
1: 7 नंबर प्लेटफॉर्म था क्या?
2: नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा कार्यक्रम था, एक चीज आप भूल गई। मैंने कहा क्या सर, मैं क्या भूल गई 7 नंबर पर? तो बोले गुस्सा भी 7वें आसमान पे रहता है। तो इस तरह से मुझे रंजनी कार्यक्रम अच्छा लगता था।
0: यानी कि ढेर सारी मीठी मीठी यादें, सब कुछ रेडियो से ही जुड़ी रहती।
1: जी हाँ बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में जब संचार के हजारों माध्यम हमारे सामने हैं, आकाशवाणी आज भी अपनी विश्वसनीयता और सरलता के साथ खड़ा हुआ है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए ये आवाज आने वाली कई सदियों तक गूंजती रहेगी। आइए आज इस गौरवशाली यात्रा के नायकों, उद्घोषकों, कलाकार और आप जैसे सुधी श्रोताओं को हम नमन करें और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नम्रता वाजपेयी और मीनू सिंह को। दीजिए अब आज के इस विशेष कार्यक्रम से संज्ञा और हम दोनों को अनुमति। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी @90

0: Akashwadi at 90.
1: हर दिल की आवाज़ आकाशवाणी, ये परिचर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर के यादगार पल। प्रतिभागी थी श्रीमती नम्रता वाजपेयी, श्रीमती मीनू सिंह, संपादन और संचालन श्रीमती संज्ञा टंडन का था और प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:25 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा की जिनकी मुस्कान करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई।

जिनके अभिनय ने हर किरदार को जीवंत कर दिया और जिनके नृत्य ने पूरी दुनिया को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, आज का रजनीगंधा समर्पित है धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को। 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही नृत्य में रुचि होने के कारण पिता ने 3 साल की उम्र में ही कथक के प्रशिक्षण के लिए कथक क्लास में उन्हें प्रवेश दिला दिया। 8 साल तक वो कथक में ट्रेंड हो चुकी थी। 9 साल में उन्हें कथक के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई। स्कूल के ड्रामा में वो भाग लिया करती थी। सन 1984 में आई उनकी पहली फिल्म अबोध, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इसी फिल्म का गीत 1 2 3 आज भी लोगों की जुबान पर है।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

श्रोताओं, तेजाब फिल्म ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद तो सफलता उनके कदम चूमने लगी। दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। हर फिल्म में उनकी एक्टिंग और डांस की तारीफ हुई। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा का एक जाना माना नाम बन गई, जिन्हें हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। अपने कैरियर में उन्होंने लगभग हर सुपरस्टार के साथ काम किया है। उन्होंने तीनों खान के साथ काम किया और हम आपके हैं कौन फिल्म में सलमान खान से ज्यादा फीस भी ली। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी सफलता का दूसरा नाम था। साजन, थानेदार, खलनायक, खतरों के खिलाड़ी, महानता जैसी फिल्मों में साथ साथ काम किया। सालों बाद फिल्म कलंक में एक बार फिर से दोनों साथ नजर आए। माधुरी दीक्षित की मुस्कान, संवाद, अदायगी बेहतरीन है। उनके नृत्य में भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। 1990 का दशक अगर हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर कहा जाए तो उसमें माधुरी दीक्षित का नाम सबसे चमकते सितारों में शामिल है।

श्रोताओं, माधुरी दीक्षित को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म फेयर के साथ साथ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी उनकी सादगी और विनम्रता हमेशा बनी रही। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। आज भी जब उनके गीत बजते हैं तो लोग खुद को झूमने से रोक नहीं पाते। उनकी फिल्मों के संवाद और गीत आज भी लोकप्रिय हैं। माधुरी दीक्षित ने साबित कर दिया कि मेहनत, प्रतिभा और अनुशासन के बल पर हर सपना पूरा किया जा सकता है। 6 बार फिल्मफेयर का पुरस्कार अपने नाम उन्होंने किया है। 13 बार फिल्मफेयर नॉमिनेशन का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी, लेकिन वो अभिनेत्री बन गई और बनी सफल अभिनेत्री। माधुरी ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं आज उनके जन्मदिवस पर।

संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी

0: चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षीय

0: वाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूल जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की

0: घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. and India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at

0: बॉबी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अभी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मर्द बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक, सरक, सरक।

फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गयी। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपहले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नच ले

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साइन तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। यह उस रात की बात है जब शोख हवा एक खूबसूरत फूल के पास ठिठक गई। अब हवा के मन की लहर का क्या कहें। कुछ देर ठहरी, अपने झोंकों में फूल की खुशबू समेट आगे चल दी। लेकिन फूल के ठहरे मन में तो

बिटलाती बलखाती हवा चलते चलते एक जर्रे के पास आई, जो खुद में सिमटा न जाने किन ख्यालों में गुम था। हवा ने उसे शरारत से देखा और अपने एक झोंके की गांठ खोल दी। फिर क्या था, फूल की खुशबू ने जर्रे को चारों ओर से घेर लिया।

क्या बताएं, वो हवा की छेड़छाड़ थी या खुशबू का असर। खोया खोया वो जर्रा अचानक बेचैन हो गया और पूछने लगा,

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। कुछ एहसास इतने खास होते हैं कि साथ ना होकर भी हमेशा पास रहते हैं। खुशबू के उस झोंके से जरा तो महक गया, जो कहना चाहता था वो हवा से कहलाया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा।

को संदेश मिला जर्रे का, उसका रंग कुछ और निखर गया, मगर चाहकर भी न मिल पाने की बंदिश थी सामने। फूल को बेहद मायूसी हुई, मुरझाने का वक्त करीब था। फूल ने अपनी तमाम खुशबू हवा को सौंपी और जर्रे को संदेश भिजवा दिया।

जर्रा झूम उठा जब जानी पहचानी प्यारी सी खुशबू ने उसे एक बार फिर घेर लिया। मगर जब हवा ने फूल का पैगाम सुनाया तो एक आग सी उठी जर्रे के सीने में। अपनी बेकसी पर वो तड़प उठा, काश वो भी फूल के इर्द गिर्द होता, कुछ पल तो साथ होते, वो कितना अच्छा होता अगर यूं होता।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। समाचारों के लिए अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और मुझको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी

0: कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting.